हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

पर ए तो हां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तो हां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

ए तो हाँ सारे ना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओं तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना।
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ?
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

अरे भाई किसी को पूरी हलवा हो बेटा जी, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम हो बेटा जी। अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम।

0: कभी गरम कभी नरम नरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम नरम गरम।
1: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख करना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी,
2: जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत।
0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट कैसा है?
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल गए।
3: अच्छा, ले लो फिर।
4: हाँ हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊं रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है बेटियों के लिए, बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170191। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते, शांत छोड़ देते हैं ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसे है
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे हैं।
3: अच्छा, ले लो फिर।
4: हाँ हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

तो 6 मई की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज है दिन बुधवार का और हमारे उन सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को बहुत बहुत मुबारक जो किसी न किसी खास वजह से आज 6 मई का ये दिन मना रहे हैं खुश होकर के। उम्मीद करती हूँ आप अपने अपने कामों पर समय से निकल गए होंगे या निकल जाने वाले हैं घर से, लेकिन साथ ही साथ किसी न किसी तरीके से आप रेडियो गुंजन धर्मशाला सुनना नहीं भूलते हैं, ये भी हमें पता है। वो चाहे आपकी गाड़ी में, कार में रेडियो लगा हो या फिर आपके पास मोबाइल सेट हो, उसमें आप हमें ट्यून इन जरूर करते हैं। जी श्रोताओं, तो अब से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान किस तरह का है, क्या इस समय बना हुआ है। फिलहाल उससे पहले एक खूबसूरत सा गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

क्या कहना, फिल्म का गीत, खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और अब आपको बता देते हैं धर्मशाला उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान क्या है।

तो श्रोता, अधिकतम तापमान आज का ये बताया जा रहा है कि 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। और आज मौसम में ठंडक है और बादल वाला रहने वाला है ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। दोपहर के समय हल्की सी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन अभी आसमान को देख करके बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है।

तो इस समय तो अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला का जो तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब जो पिछले कल अनुमान था कि आज अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस जाने का अनुमान है वो गलत हो गया है, क्योंकि इसी समय 16 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और दोपहर के समय जैसे हम कह रहे हैं कि 1:30 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में हल्की फुहारें या बारिश होने की संभावना हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर होगी, कहीं पर भी हो सकती है। ये तो 25% से लेकर 28% की संभावना है। और हवा की गति लगभग 3 से 5 मील प्रति घंटा दक्षिण पश्चिम दिशा से रहेगी, और नमी जो है ह्यूमिडिटी का स्तर 70% से लेकर के 75% के आसपास काफी अधिक रहेगा। तो इस समय ह्यूमिडिटी जो है वो है 50%, हवा में नमी। और किस तरह का जो मौसम है वो पिछले दिनों में बना रहा और आगे आने वाले समय में जो प्रिडिक्शन जताई जा रही है वो क्या क्या है, उसके बारे में करेंगे कार्यक्रम में आगे बात, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आपको एक और गीत सुनवाया जाए। अभी देखिए ना, पिछले कुछ दिनों में ये जो बारिश रही है, रह रह के आ रही थी, सुबह उठते ही बारिश, कल तो पूरा दिन भर ही रही है भैया, समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तो उसके मद्देनजर हमने रख लिए सारे बरसात के गीत। अब हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा गीत जो है वो आपको सुनवाया जाए। खैर, एक बड़ा प्यारा सा गीत आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर फिल्म से अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाजें हैं। सुनिए, झूमिए इन मदमस्त हवाओं और पौधों के साथ।

मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं, और शायद इस गीत को सुन करके आप भी झूमने गाने पे मजबूर हो गए होंगे, है ना। आपको भी लग रहा होगा कि भाई ये बात तो सही है कि नेचर जो है ना वो हमें झूमने पे मजबूर कर ही देती है, क्यों श्रोताओं। अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में सुना आपने ये खूबसूरत सा गीत। एक बार फिर, ये था फिल्म का नाम। लेकिन हाँ, ये जो प्रकृति है ना, जब ये इस तरह से झूमती गाती है जिस तरह से ये 2-3 दिनों से कर ही रही थी, तो नुकसान भी बहुत होता है, और वो होता है हमारे किसानों का, जो कि आजकल हुआ। और श्रोताओं, क्या नुकसान हुआ इसके बारे में भी बात करेंगे हम कार्यक्रम में आगे। फिलहाल 9:20 पर आपके लिए रेडी किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से, और फिर हम आपसे मिलेंगे उसके बाद 9:30 पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन, 17 मई को होगा मतदान। पंचायत चुनावों के लिए कल से भरे जाएंगे नामांकन पत्र, 12 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है राज्य सरकार। और कुल्लू जिले में मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रे की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक पूरी तरह बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 51 शहरी निकायों के 17 मई को होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आज ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 51 शहरी निकायों में कुल 1426 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 32 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं, जबकि 1394 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए हैं। नगर पंचायत और नगर परिषदों में मतों की गिनती 17 मई को मतदान पूरा होने के बाद शुरू होगी, जबकि नगर निगम चुनाव के लिए पड़ने वाले वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। प्रदेश के 3754 ग्राम पंचायतों में कल 7, 8 और 11 मई को नामांकन भरे जाएंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। तीन चरणों में होने वाले इन चुनावों के लिए 26, 28 और 30 मई को मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं, जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। लाहौल स्पीति जिला की ताबो पंचायत में ग्राम वासियों ने पंचायत नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से किया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि ताबो पंचायत का ये कदम न केवल स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है, बल्कि अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणादायक है।
1: स्पीति के ताबो पंचायत में ग्रामवासियों ने आपसी सहमति और सौहार्द का परिचय देते हुए पंचायत नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से किया है। कुमारी छेरिंग किंजम को पंचायत प्रधान और थिन्ने दोर्जे को उपप्रधान चुना गया है। इस निर्णय के बाद पूरे पंचायत क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बिना किसी विवाद और चुनावी प्रतिस्पर्धा के हुआ ये चयन ग्रामीणों की एकता और समझदारी और आपसी विश्वास का प्रतीक माना जा रहा है। ग्रामवासियों ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में पंचायत क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए किलाड़ में दूसरी रिहर्सल आयोजित की गई। इस अवसर पर निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पांगी के आवासीय आयुक्त अमनदीप सिंह ने बताया कि कुल 19 ग्राम पंचायतों में प्रधान व उप प्रधान, 97 वार्ड सदस्य, 15 पंचायत समिति सदस्य और एक जिला परिषद सदस्य के चुनाव में 15,791 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि पांगी में 26 व 28 मई को दो चरणों में चुनाव होंगे, जिनके लिए 97 मतदाता बूथ और 52 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संबंधी सामग्री का आवंटन 9 और 10 मई को किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सभी अधिकारियों को सारी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दूरदराज क्षेत्रों में स्थापित मतगणना केंद्रों में बिजली के वैकल्पिक साधनों की भी व्यवस्था करने को कहा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना

0: कार्रवाई नहीं कर रही है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है, मगर सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस ईवीएम के दम पर कांग्रेस की सरकार बनी, आज मुख्यमंत्री उसी ईवीएम को बाकी राज्यों में हार का कारण बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हार के समय ईवीएम को दोषी ठहराना तर्कसंगत नहीं है।
1: इस ईवीएम की वजह से वो खुद जीत, आप कल्पना करिए, ईवीएम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में वोट हुए, ईवीएम के माध्यम से परिणाम निकले, सरकार कांग्रेस पार्टी उस वक्त तो प्रश्न खड़ा नहीं किया, लेकिन वेस्ट बंगाल में, आसाम में, पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो ईवीएम खराब है। वही ईवीएम जिस ईवीएम ने हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार को बनाया, हमने तो प्रश्न खड़ा नहीं किया। तो इसलिए अब तथ्यहीन बातें हैं, अर्थहीन बातें हैं, कोई मतलब नहीं है, और कांग्रेस को पूरे देश के लोगों ने नकारा है, सिरे से नकारा है, अब हिमाचल प्रदेश भी आने वाले समय में नकारेगा।
0: कुल्लू जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग दर्रा जाने के उत्सुक सैलानी अब मढ़ी तक जा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रा की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
2: मढ़ी तक जाने के लिए पर्यटकों को एनजीटी के नियमानुसार ऑनलाइन परमिट हासिल करना होगा। एनजीटी के नियमानुसार गुलाबा से आगे मढ़ी व रोहतांग की ओर एक दिन में सिर्फ 1200 वाहन ही जा सकते हैं, जिनमें 800 पेट्रोल व 400 डीजल वाहन होंगे। इसके अतिरिक्त गुलाबा स्थित अस्थायी पुलिस बैरियर व मढ़ी में एक अतिरिक्त अस्थायी पुलिस बैरियर स्थापित किया जाएगा। वहीं सड़क मरम्मत एवं टारिंग कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए रोहतांग मार्ग को प्रत्येक मंगलवार को आगामी 2 सप्ताह अर्थात 19 मई 2026 तक पूर्णतः बंद रखा जाएगा। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है। बीते 4 दिनों में हुई वर्षा के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही है, जबकि निचले व मैदानी क्षेत्रों में उमस से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार के मुताबिक आज से प्रदेश में मौसम में सुधार आने की संभावना है।
3: 6 मई से लेकर 9 मई तक जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिंगौर, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। हालांकि जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें विशेषकर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इसके जो आसपास क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में उसमें एक स्थानों में 6 मई से लेकर 9 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। 7 मई से लेकर 9 मई तक प्रदेश में कोई अलर्ट नहीं।
0: और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, 44 से 54 आयु वाले भी डकार रहे वृद्धावस्था पेंशन। उपमंडल रोडू की तांगणू जांगलिख पंचायत में 45 फर्जी लाभार्थियों का मामला आया सामने, विभाग कर रहा जांच। पंजाब केसरी ने पंचायत चुनाव पर लिखा है, कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू, एक सीट पर कई दावेदारों से गांवों में बड़ी हलचल। यानी जागरण ने खबर दी है, नशा तस्करी के आरोप तय तो नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, राज्यपाल से स्वीकृति के बाद राजपत्र में नियम अधिसूचित। मौसम पर दैनिक भास्कर के शब्द हैं, बर्फबारी, बारिश से 6 डिग्री तक गिरा पारा, मई के दूसरे सप्ताह भी जारी रहेगी ठंड। हिमाचल दस्तक के मुताबिक हिमाचल में मई में बर्फबारी, बारिश व ओलावृष्टि से दिसंबर जैसी ठंड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनावों के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन, 17 मई को होगा मतदान। पंचायत चुनावों के लिए कल से भरे जाएंगे नामांकन पत्र, 12 मई को होगी नामांकन पत्रों की जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है राज्य सरकार। और कुल्लू जिले में मढ़ी से आगे रोहतांग दर्रे की ओर किसी भी प्रकार की वाहन आवाजाही अगले आदेशों तक पूरी तरह बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी श्रोताओं, प्रादेशिक समाचारों के बाद हम हाजिर हो गए हैं फिर से एक बार आपसे करने बातचीत 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। तो कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग धर्मशाला और स्टूडियो की घड़ी में जी हाँ बज गए हैं 9:30। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो क्या कहा था हमने प्रादेशिक समाचारों से पहले कि आपको मौसम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त जो जानकारी हमारे सामने आ रही है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं जरा सतर्क होके सुनिएगा कि बस अब से कुछ ही देर में, डरिए नहीं ये तो होता ही रहता है, अब से कुछ ही देर में यानी कि 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, समझ गए ना आप, कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जी हाँ, ये प्रस्तावित था कि 6 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्य समाप्ति तक कोतवाली बाजार, IPH कॉम्प्लेक्स, MC ऑफिस, यात्री निवास, जोनल हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक अस्पताल, न्यायिक परिसर, टेलीफोन एक्सचेंज, SP कार्यालय, DC कार्यालय, डिपो बाजार, सिविल लाइंस, रामनगर, लोअर TCB, महाजन क्लिनिक श्यामनगर, पुलिस लाइंस, एकजुट कॉलोनी, चिलगाड़ी, हाउसिंग बोर्ड, शिक्षा बोर्ड, AIR, सरकारी कॉलेज, BED कॉलेज और सकोह चेरिया, HPCA, स्टेडियम, सरस्वती नगर, सिविल लाइंस, सिविल बाजार, फॉरेंसिक लैब, माइक्रोवेव, टेलीफोन एक्सचेंज नरगोटा, टी एस्टेट, पेट्रोल पंप, मान फिलिंग स्टेशन, गुरखा कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी, सर्किट हाउस, ऑफिसर कॉलोनी, चिलगाड़ी तथा आसपास के क्षेत्रों में। अब आसपास के और कौन से क्षेत्र हैं पता नहीं हमें, सारे क्षेत्रों के नाम तो शायद हमने ले दिए हैं, तो इनमें विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। और श्रोताओं आपको एक मज़ेदार बात और बताऊं कि श्यामनगर में तो जो बिजली है यानी विद्युत आपूर्ति वो सुबह 8:30 बजे ही बाधित हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर जल्दी गई है तो शायद जल्दी वापस भी आ जाएगी, या ये भी हो सकता है कि इन क्षेत्रों में अलग अलग समय पर काम किए जाएं, मेंटेनेंस की जाए, और फिर जब मेंटेन हो जाए तो आपके क्षेत्र में बिजली आ भी सकती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसमें लिखा है कि कार्य समाप्ति तक, और मौसम खराब होने पर अगले दिन शटडाउन किया जाएगा, तो जनता से कॉपरेशन की उम्मीद जताई गई है। चलिए अब इतने सारे लंबे अंतराल के बाद हम चलते हैं एक खूबसूरत से गीत की ओर। श्रोताओं जीवन में आशा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कौन? कोई आशा, वो लड़की नहीं जिसका नाम आशा होता है, होप, उम्मीद, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान होता है।

जी श्रोताओं, तो आशा जो है अपने दिल में हमेशा हमें जगाए रखनी चाहिए। और कोई भी उम्मीद कभी मत डिगने दीजिए, क्योंकि उम्मीद पर ही तो हमारा जीवन कायम है। उम्मीद नहीं होगी तो हम सपने नहीं देखेंगे, सपने नहीं देखेंगे तो फिर उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे, और कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर वो पूर्ण कैसे होंगे, मतलब हमारे सपने पूरे कैसे होंगे, या जो आप चाहते हैं वो कैसे हो पाएगा। तो इस जिंदगी को अजीब दास्तां बिल्कुल मत बनने दीजिए। अब लेती हूँ आज का विचार। जब तक है हिम्मत तब तक नहीं होती है हार। तो देखिए, हमारा आज का विचार भी इसी बात से कुछ मिलता जुलता है। हिम्मत अपनी बनाए रखिए और अपनी जिंदगी चलाए रखिए।

अच्युतम, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज जो है वो कल परसों चौथ के मौसम को देखते हुए ही मैंने कुछ गीत चुने थे इस कार्यक्रम के लिए। तो मंजिल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़।

तो रिमझिम सावन कितना गिरा और कितना चाहिए कि गिरे, आप सोचिए खुद ही। मुझे लगता है 2-3 दिनों की बारिश से ना हम भी बोर होने लग गए थे भाई। ठंड बढ़ गई है धर्मशाला में। हर्षोत्तर 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ये प्यारा सा गीत आपने सुना फिल्म मंजिल से किशोर कुमार की एवरग्रीन आवाज में। और बॉलीवुड के बहुत सारे गायक अब हमारे बीच में नहीं हैं, दिग्गज गायक जो ये दुनिया छोड़ गए हैं, लेकिन वो अपनी आवाज़ के माध्यम से हमेशा हमारे साथ हमारे मध्य में जीवित रहते हैं। तो जो आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कि कोई आपको हमेशा ही याद करता रहे, कोई क्यों ये सारी दुनिया ही आपको याद करती रहे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करके जाइए कि नहीं नहीं अभी मत जाइए, अभी तो हम यहीं पर हैं, लेकिन अपना ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कीजिए कि हमेशा जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। चलिए एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि कुछ ही देर में कुछ क्षेत्रों में बिजली विद्युत आपूर्ति बाधित होने वाली है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने सेलफोन चार्ज नहीं किए हैं तो फटाफट से प्लग इन कर दीजिएगा। थोड़ा सा समय अभी भी बचा है, हैं कम से कम आपके पास 15 मिनट तो हैं ही। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं मैंने कार्यक्रम में पहले आपको बता दिया है, इसलिए समय से आ जाइए करिए भाई। आपको पता ही है 9 बजे हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है, एग्जैक्ट 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक रहते हैं हम आपके साथ। और हाँ, चलिए फिर अब फिर से मौसम की तरफ, जिसको मैंने बड़ी देर से रोक के रखा था कि करेंगे भाई तुम्हारे बारे में भी बात करेंगे। मौसम वहाँ से मुझे इशारे कर रहा है, आपको पता नहीं है मैं इस समय सेलिब्रिटी हूँ, मेरे बारे में बात करना ज़रूरी है। और आप कर रही हैं कभी बिजली के बारे में बात, कभी कुछ और बात, तो भाई सारी बातें करना ज़रूरी होता है। मौसम जी, आप तो अपनी बात खुद ही कर रहे हैं कितने दिनों से।

तो मौसम ने हमारे गले में भी कुछ खराश सी बना दी है भाई। गुस्सा कर रहा है ये हमको कि जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो कार्यक्रम करने नहीं दूंगा। तो भाई हिमाचल में मौसम खराब बना हुआ है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बारिश दर्ज की गई है। वहीं कुफरी, फागू और महासू पीक समेत मंडी और सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि भी हुई। और ओले तो हमारे यहाँ पे भी पड़े हैं, दो दिन पहले कितने मोटे मोटे। तो चार दिनों से दिन से ओलावृष्टि हो रही है और इससे कुफरी में सेब की फसल जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। जिला सिरमौर के राजगढ़ के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और क्षेत्र में गेहूं, जौ और सरसों की फसलें अभी भी खेतों में खड़ी हुई हैं। श्रोताओं, और भी बहुत सारे फल फ्रूट के जो पेड़ हैं उन पर जो नई नई बौर आई थी वो भी इस अंधड़ और ओलावृष्टि से झड़ चुकी है। तो मौसम विभाग ने बुधवार को किन्नौर और लाहौल स्पीति यानी आज को छोड़ करके अन्य सभी जिलों में आंधी तूफान के साथ आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और 7 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ पड़ जाएगा कमजोर। विभाग के अनुसार 7 से 9 मई तक पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर जरूर पड़ेगा, लेकिन इस दौरान अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी रहने के आसार हैं। 10 मई और 11 मई को पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। तो ठीक है मौसम जी, हमने कर दी आपके बारे में बात, बता दिया सबको सब कुछ, अब प्लीज हमें कार्यक्रम करने दीजिएगा। तो श्रोताओं चलिए फिर हम अगले गीत की ओर

रहा हूँ, देखिए हम लोग ना कितने सपने संजोते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होना क्या है किसी को नहीं पता। पर फिर भी हम प्रयासरत रहते हैं ना, हम अपनी तरफ से कोशिश तो करते रहते हैं। और उसी कोशिश को देखते हुए हमारी जीवन की जो इबारत है ना, वो लिखी जाती है। इसलिए ये सोचना भी ज़रूरी है, मतलब सपने लेना भी ज़रूरी है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि जब हम ये चीज़ें सोचते हैं तभी हम कुछ लक्ष्य बना पाते हैं, और जब लक्ष्य बना पाते हैं तभी हम उस पर चलते हैं और मेहनत करते हैं। और ऐसी ही कुछ मेहनत की जा रही है आजकल हमारे आसपास भी, कुछ संस्थाओं के साथ मिल करके, खास करके अभी के समय में, यानी कि ये जो चुनाव वाला समय आ रहा है, आ चुका है, तो कौन क्या मेहनत कर रहा है इसके लिए कि ये जो चुनाव हैं ये कैसे होने चाहिए, इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम कार्यक्रम में जल्द ही बात करने वाले हैं। और किसी ऐसे शख्स से हम मिलवाएंगे आपको इस हमारे प्यारे से दोस्त माइक के थ्रू आपके रेडियो सेट पर। आप ज़रूर सुनेंगे उनकी आवाज़। करना होगा आपको थोड़ा सा इंतज़ार, हम 10:30 के बाद उनको लेंगे ऑनलाइन। और क्या हो रहा है आजकल, इस पर ज़रूर करेंगे बात। वैसे आपको बता दूं कि आज जो है वर्ल्ड नो डाइट डे है, और साथ में हमारा भारत का नर्सिस डे भी मनाया जा रहा है।

एक सॉफ्ट सा गीत आप सभी तक लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है दहक और आवाजें हरिहरन और साधना सरगम की हैं। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हमारा डेजिग्नेशन बताना जरूरी है आप सभी को। लीजिए सुनिए गूंज अपने पन की।

जी श्रोताओ, ये गीत सुना आपने 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। दहक फिल्म का ये गीत था हरिहरन और साधना सरगम की आवाजें। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

और अब बात करेंगे हम आज के दिन के बारे में, यानी कि 6 मई। और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वकील, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ मोतीलाल नेहरू जी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उनकी जयंती है। उनका जन्म हुआ था 6 मई 1861 को। वो 1919 से लेकर 20 और 1928 से लेकर के 29 के बीच 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नेहरू जी का जन्म 6 मई 1861 को इलाहाबाद, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ब्रिटिश भारत, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, वहां हुआ था। और इसी तरह से एक भारतीय कवित्री और गुजराती मूल की वक्ता हैं सुजाता भट्ट। उनका जन्म 6 मई 1956 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। संजय मित्रा, जो भारत के पूर्व रक्षा सचिव हैं और इससे पहले वो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है, तो वो पश्चिम बंगाल कैडर के 1982 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। आईएएस से सेवानिवृत्ति के बाद मित्रा दिल्ली सहित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लोक नीति संकाय में प्रोफेसर बन गए थे। उनका जन्म 6 मई 1959 को दिल्ली में, भारत में हुआ।

और आज बिंदुदारा सिंह जी का भी जन्मदिन है। वो 1964 को मुंबई महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। उन्होंने मास्टर शेफ 2, कॉमेडी सर्कस जैसे टेलीविजन शोज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बिग बॉस के तीसरे सीजन के विजेता भी वो रह चुके हैं। और बहुत सारे फिल्मों और टेलीविजन शोज में उन्होंने काम किया है। फिल्म करण से अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने की थी और जय वीर हनुमान जिसमें उन्होंने भगवान हनुमान की भूमिका निभाई थी, कोई है, 2003 में आई थी ये फिल्म। जाल और कर्मा में 440 फिल्मों में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है।

जन जयंतियों की लिस्ट में एक नाम और आता है, भारतीय निशानेबाज गगन नारंग। ओलंपिक गोल्ड केस्ट का समर्थन उनको प्राप्त है। वो लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय थे। 2012 के लंदन ग्रीष्मकालिक ओलंपिक्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। उनको 2011 में पद्मश्री पुरस्कार और 2010 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 1983 आज ही के दिन वो तमिलनाडु में जन्मे थे। और अगर हम पुण्यतिथियों की बात करें श्रोताओं, तो शाहू यानी मराठा वंश के भोसले राजा, उनकी पुण्यतिथि है आज। भूला भाई देसाई की पुण्यतिथि है। भारत के एक प्रमुख संसदीय नेता और महात्मा गांधी के सहयोगी रहे थे ये। सुब्बा राव भारत के 9वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी भी पुण्यतिथि आज ही है। और शांता कालिदास गांधी एक भारतीय रंगमंच निर्देशक, नर्तकी और नाटककार थी। उन्हें 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इंदिरा गांधी प्रशासन में उन्हें राष्ट्रीय नाट्यालय की अध्यक्ष बनाया गया था। उनका निधन 6 मई 2002 को हुआ था। कुछ और बातें 6 मई के बारे में करेंगे हम कार्यक्रम में।

आगे। फिलहाल आपको जानकारियां बहुत सारी दे दी हैं हमने, लगता है हमें कि एक म्यूजिकल ब्रेक की जरूरत है अब हमको, और आपको भी।

शुराव, बरखा बहार तो भाई आ ही रही है और कब आ जाती है हमें पता ही नहीं लगता है। वैसे ये सावन का महीना तो है नहीं, महीना तो ये गर्मियों का है और इसमें कैसा मौसम होना चाहिए ये आपको भी पता ही है। हम ज़्यादा क्या कहें, लेकिन भाई सब कुछ उल्टा पुल्टा हो ही रहा है। तो मौसम जी कहते हैं कि हम भी पीछे क्यों रहें, हम भी उलट पुलट हो जाते हैं। जब इंसान नहीं मान रहा है, वो अपनी मन मर्जियाँ कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ना करूँ, क्यों रोक सकता है कोई मुझे। देखिए, हम किसी को भी कुछ भी करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ, खास करके इन दिनों में हम कुछ चीज़ें तो ज़रूर रोक सकते हैं अगर हम मिल करके एकजुट हो जाएं। वैसे इन दिनों ही क्यों रोकें, हम क्यों नहीं हमेशा के लिए एकजुट हो जाते हैं और कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं, ये बातें, ये हमेशा के लिए ही बंद हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। कौन सी बातें हैं, क्या बातें हैं, तो चलिए करते हैं हम सस्पेंस ख़त्म। आपको बताते हैं कि कुछ लोगों ने छेड़ा है नशा मुक्त चुनाव अभियान। जी बिल्कुल, इसका आगाज हो चुका है।

और क्या है ये अभियान, चलिए बताती हूँ मैं आपको। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति का जन जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान हो गया है शुरू। योल, कांगड़ा की योल जो पंचायत है, पंचायत चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति जिला कांगड़ा ने सोमवार को नशा मुक्त चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी। अभियान का शुभारंभ उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा द्वारा नशा मुक्त चुनाव का पर्चा लॉन्च करके किया गया और समिति के पदाधिकारियों ने उपायुक्त से मुलाकात करके अभियान के उद्देश्य और रूपरेखा की जानकारी दी कि वो किस तरह से कार्य करेंगे और क्या चाहते हैं कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। और इसमें जो समिति के सदस्य हैं वही अपने अपने लेवल पर कार्य करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत गांव-गांव और वार्ड-वार्ड स्तर पर पोस्टर लगाने तथा जनसंपर्क के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कि वे चुनावों के दौरान, खास करके, जी हाँ, आजकल के दिनों में चुनावों के दौरान शराब, नशे, नशीले पदार्थ और पैसों के प्रलोभन से दूर रह करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। समिति के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य खास तौर पर युवाओं को नशे से दूर रख करके जिम्मेवार मतदान के लिए प्रेरित करना है। ये अभियान समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ स्वच्छ लोकतंत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। और समिति ने मतदाताओं से ईमानदार और विकास के प्रति प्रतिबद्ध उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील भी की है। और श्रोताओं, इसी विषय पर हम भी बात करेंगे। एक जागरूक मतदाता कह लें या फिर श्रोता कह लें, उनसे कार्यक्रम में बात करने वाले हैं, जो हमारा सेगमेंट होता ही है, आपको पता ही है, 10:30 के बाद वाला। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

और श्रोताओं, अब हम चलते हैं आईपीएल स्टेडियम में होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग की ओर। तो इन तीन महत्वपूर्ण मैचों के दृष्टिगत जिला प्रशासन कांगड़ा द्वारा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रक्रिया से संबंधित सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। इस संबंध में एसडीएम कांगड़ा शिल्पी बेक्टा ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित चारों मॉक ड्रिल्स सफलतापूर्वक संपन्न कर ली गई हैं और सभी संबंधित विभाग किसी भी संभावित आपदा स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने आयोजन की संवेदनशीलता और बड़ी संख्या में संभावित दर्शकों, खिलाड़ियों, वीआईपी, वीवीआईपी, मीडिया प्रतिनिधियों और आयोजन कर्मियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संभावित आपदा प्रदेशों पर आधारित मॉक अभ्यास आयोजित किए या फिर करवाए गए। इन अभ्यासों के माध्यम से न केवल विभागों की प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया, बल्कि संसाधनों की उपलब्धता, संचार प्रणाली, निकासी योजना, भीड़ नियंत्रण और अंतर विभागीय समन्वय का भी व्यापक मूल्यांकन किया गया। बताऊं, आपको याद दिला दें वो वाला मैच जो हो रहा था रात को यहीं पर हमारे धर्मशाला स्टेडियम में, और बहुत तनातनी का माहौल था उस समय, और जितने भी लोग स्टेडियम में गए थे वो तो अपना मस्त थे, मैच देख रहे थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि बाहर आखिरकार क्या चल रहा है। लेकिन आप सबको तो पता था ना, और इसी बीच खबर आ गई कि लड़ाई छिड़ गई है। और उस वक्त किस तरह से आनन फानन में बिना किसी को कुछ बताए हुए वहां पर, खास करके स्टेडियम में, कोई ऐसा अफरा तफरी का माहौल ना फैल जाए, बीच में ही मैच को रुकवा करके लोगों को बाहर निकाला गया। तो इसको कहते हैं व्यापक इंतजाम, कि किस तरह से आप किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। हमने वो समय भी देखा था।

की 28 अप्रैल 2026 को आयोजित स्ट्रक्चरल कोलैप्स ड्रिल के दौरान स्टेडियम के एक हिस्से को आंशिक ध्वस्त होने की काल्पनिक स्थिति में खोज और बचाव अभियान, घायलों की सुरक्षित निकासी, प्राथमिक उपचार, ट्रायल प्रणाली तथा एम्बुलेंस मूवमेंट का परीक्षण किया गया, जबकि 29 अप्रैल 2026 को ड्रोन घुसपैठ, एयर स्पेस खतरा सिमुलेशन आयोजित किया गया, जिसमें कि अनाधिकृत ड्रोन की संभावित घुसपैठ की स्थिति में पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और तकनीकी टीमों की प्रतिक्रिया, सूचना संप्रेषण तंत्र और एयर स्पेस सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। पहली नाइट टाइम इमरजेंसी ड्रिल के अंतर्गत मैच के दौरान बिजली बाधित होने की स्थिति में बैकअप लाइटिंग सिस्टम के सक्रियण, कम दृष्टा में निकासी, और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली तथा आपातकालीन निकास मार्गों का परीक्षण भी किया गया। इसके अतिरिक्त फायर इमरजेंसी ड्रिल के तहत फूड कोर्ट और इलेक्ट्रिकल रूम में आग लगने की काल्पनिक स्थिति का सिमुलेशन किया गया। अग्निशमन विभाग द्वारा फायर दमन, धुआं नियंत्रण, फायर हाइड्रेंट सक्रियण, घायलों की निकासी तथा इंसिडेंट कमांड सिस्टम का सफल संचालन किया गया। और इन सभी अभ्यासों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, SDRF, होमगार्ड, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, HPCA प्रबंधन, विद्युत विभाग, जल शक्ति विभाग, स्वयंसेवक और अन्य संबंधित एजेंसियों ने सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की। मॉक ड्रिल के बाद आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों की तैयारियों का मूल्यांकन किया गया और आवश्यक सुधारात्मक सुझावों को शामिल किया गया। और आमजन से अपील की गई है कि मैच के दौरान प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों, पार्किंग व्यवस्था, प्रवेश निकास नियमों और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपातकाल स्थिति की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। जी हाँ श्रोताओं, तो जब हमारे यहाँ पर इस तरह के आयोजन होते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग आते हैं और अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। देखते हैं धर्मशाला का प्यारा सा ये स्टेडियम, खूबसूरत स्टेडियम में से एक है हमारा ये धर्मशाला का स्टेडियम। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये जानकारी देते देते हमारी बातचीत कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, लेकिन आप इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि वाकई में हमारे धर्मशाला का जब नाम आता है ना, किसी के भी मुख पर, बाहर से आने वाले लोगों के मुंह से जब हम बात सुनते हैं कि अरे वाह कितना प्यारा स्टेडियम है और कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, तो हमें गर्व तो महसूस होता ही है। और यही गर्व हमें हमेशा महसूस होता रहे, इसके लिए अपने आसपास सफाई का भी ध्यान रखिए श्रोताओं, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे हमेशा ही, और हमारे जो आने वाले मेहमान हैं उन्हें भी खुशी महसूस हो।

अब कार्यक्रम में समय हो गया है 10:30। और लेंगे हम छोटा सा अंतराल और फिर करेंगे हम उस महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात। आप सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस समय हमने जो आपसे अभी अभी एक बात कही कि चुनावों के दौरान किस तरह का माहौल होना चाहिए, उसके बारे में कुछ संस्थाएं प्रयास कर रही हैं। तो उनके जो ड्रग अब्यूज़ कोऑर्डिनेटर हैं हमारे ज़िला कांगड़ा के, उनसे हम बात करने वाले हैं। नाम बताऊंगी आपको उनका तभी जब हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए लेते हैं हम छोटा सा अंतराल।

0: तो श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 10:30 के बाद बात करने वाले हैं एक जागरूक मतदाता, जागरूक श्रोता के साथ। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर हैं संजय कुमार जी, जो कि जिला कांगड़ा के ड्रग अब्यूज कोऑर्डिनेटर हैं, और उनसे हम करेंगे बात, जो कि हमने अभी आपसे एक खबर साझा की उसके बारे में क्या कहना है उनका। हेलो
1: हेलो
0: संजय जी, नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार नमस्कार,
0: स्वागत है।
1: थैंक यू रेडियो गुंजन।
0: गुड मॉर्निंग।
1: थैंक यू रेडियो गुंजन, और आपका थैंक यू।
0: थैंक यू जी। आपको हमारी आवाज आ रही है?
1: जी जी आ रही है
0: जी। संजय जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप इस संबंध में, जो आपने हम सब ने मिलकर के डीसी सर को जो ज्ञापन हमने सौंपा है उसके बारे में, जो नशा मुक्त चुनाव के बारे में है।
1: जी एक्चुअली परसों हमने जिलाधीश कांगड़ा श्री हेमराज बैरवा जी के पास गए थे, और एक ऐसा पोस्टर, ऐसी गतिविधि जो है, जो हिमाचल ज्ञान व्यान समिति जैसे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस और गुंजन जैसी संस्थाओं ने डिजाइन की थी कि इस बार का चुनाव है वो नशा मुक्त चुनाव हो, नशे को मध्य रखते हुए इसको कम करने या इसको हटाने के बारे में जो बात करेगा उसी को ही पंचायत जैसे अहम पदों पर आने का जो है वो सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस सिलसिले में जो हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने जो एक पर्चा डिजाइन किया था उसके ऊपर स्पेशल अपील की गई थी डोर टू डोर जाने के लिए कि नशा जो है ना बांटें, ना नशा लें, ना नशा करें, और नशा करने वालों को पंचायत जैसे के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं, जैसे वार्ड पंच है, प्रधान है, ये बहुत मुख्य पद होते हैं, तो इनसे ऐसे लोगों को दूर रखने के लिए एक स्पेशल अपील की गई थी। और जो वॉलेंटियर्स हैं वो इस पर्चे को इस दौरान चुनाव अभियान के दौरान बांटेंगे, डोर टू डोर भी जाएंगे स्पेशल पंचायत।
0: आपको क्षमा कीजिए, मैं आपको टोक रही हूँ बीच में ही। मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि ये सिर्फ पर्चा देने तक, ज्ञापन देने तक सीमित रहने वाला है, या इसके बारे में आगे कुछ और किया भी जाएगा? ये अभियान जो है ये सिर्फ चुनावों तक सीमित रहेगा या उसके बाद भी चलता रहेगा?
1: जी ये बड़ा सही सवाल है आपका, और ड्रग अब्यूज एक ऐसा मुद्दा है जो कुछ क्षणों के लिए या कुछ मात्र कुछ अवधि के लिए जो है इसको ही नहीं लिया जा सकता, बल्कि ये तो लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। जब तक नशा हमारे समाज की जड़ों में है तब तक हमारा समाज जो वो स्वस्थ समाज हो ही नहीं सकता, और इसके लिए स्पष्ट विजन के साथ जो है लोगों को चुनावी तौर पर अगर उतरेंगे और इससे चिट्ठे को, नशे को दूर भगाने का प्रण लेके जो लोग पंचायत जैसे अहम पदों पर आएंगे तो अवश्य ही नशा जो है वो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करने से हटेगा और हमारी पीढ़ी जो है वो स्वस्थ पीढ़ी पैदा होगी। इसलिए ही डीसी साहब से हमने उस दिन जो है एक ये इतना सुंदर, इतना अच्छा पर्चा जो था वो लॉन्च करवाया था कि ये पर्चा जो है मात्र एक चुनावी रस्म ही ना बनके रह जाए, बल्कि ये पर्चा जो है वो मनों को चेंज करने का, दिलों को चेंज करने का जो है वो एक काम करेगा और स्वस्थ समाज की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण सहयोग देगा।
0: तो डीसी सर से आपको कैसा रिस्पांस मिला इस पर?
1: जी डीसी सर श्री हेमराज बैरवा जी जिला कांगड़ा के एक यंग है, डायनामिक है, बहुत काबिल ऑफिसर हैं, और ये जो प्रण लेते हैं उस दिशा में इनको जब लोगों का साथ मिलता है तो बहुत अच्छे से उसको अंजाम देने में जो है वो हेल्प करते हैं, तो सर का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, और सर अच्छे काम के लिए हमेशा जो है वो आमजन के साथ रहते हैं।
0: अब इस अभियान में आप लोग आगे करने क्या वाले हैं, मतलब कैसे आप लोगों को कन्विंस करने वाले हैं जाकर के, और कहां पर खास करके, पंचायती इलाकों में या फिर जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी?
1: जी ये जो पर्चा है वो हम दोनों जगह बांटेंगे, जहां पर हिमाचल ज्ञान, क्योंकि ये सारा स्वयं से भी काम है, जो लोग अपने सर्विस, अपने कामों के अलावा जो समाज सेवा में सही मायने में समय देते हैं वो लोग कुछ समय के लिए, घंटा, दो घंटे, तीन घंटे के लिए इकट्ठा होते हैं, और वो जहां एक जगह उनकी आसानी से पहुंच के अनुसार वहां के लोग मिलने के उसमें हों तो वहां पर जाकर जो है वो इसको बांटते हैं। तो बड़ी जल्दी लोगों ने खुद समिति बीजेपी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो धर्मशाला इकाई है, इसकी जो रैत इकाई है, इसकी जो कांगड़ा इकाई है, उन्होंने एक एक दो दो पंचायत चिन्हित की है। तो बड़ी जल्दी जो है वो धर्मशाला के जो हमारा योल एरिया का चितैड जो नई पंचायत बनी है, तो एक दो दिन में जो है वहां जाकर जो है डोर टू डोर कैंपेन, उसके बाद कस्बा की जो नई पंचायत बनी है वहां डोर टू डोर कैंपेन के रूप में लोगों को ये पर्चा देकर बताया जाएगा कि हम लोग क्यों अपील कर रहे हैं, हम लोग कौन है और हम क्यों नशे से जो है वो दूरी बनाने का संकल्प लेकर जो इन चुनावों को देख रहे हैं।
0: यानी कि कहने का मतलब ये है कि ना तो आप ऐसे लोगों को वोट दें जो इन गतिविधियों में संलिप्त हैं, चाहे वो खुद करते हैं या लोगों को, मतलब क्योंकि आसपास के लोगों को जानकारी उतनी तो होती ही है ना। और
1: एग्जैक्टली देखो ना, सरकार ने भी ये एक बड़ा अच्छा कदम किया है, एक बड़ा अच्छा अमेंडमेंट जो है पंचायती राज इलेक्शंस में की है कि जो व्यक्ति नशा का दोषी पाया गया है, चिट्टे का दोषी पाया गया है, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा। तो सरकार की मंशा साफ है एक स्वस्थ समाज को बनाने के लिए, तो ऐसे में एक जन मानस जो है, एक आम आदमी जो है, उसको भी सरकार का साथ देना चाहिए, उसको भी इन ऐसी जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, इस तरह की गतिविधियां हैं, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए अपने आसपास में, अपने समाज में, और अपनी पंचायत को एक अच्छी पंचायत बनाना चाहिए। वहां नशे के बजाय जो है वो एक लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी खोलने की बात की जानी चाहिए, वहां अच्छे एक प्लेग्राउंड की बात की जानी चाहिए, वहां अच्छा वाईफाई सिस्टम की, वहां अच्छी सैनिटेशन सिस्टम की बात की जानी चाहिए, वहां पर जो अच्छी एग्रीकल्चर सिस्टम को साउंड बनाने की बात की जानी चाहिए।
0: होता क्या है कि जब भी ये इस तरह की गतिविधियां होती हैं, इलेक्शन आते हैं, तो अक्सर देखा यही जाता है कि लोगों को इकट्ठा करके कुछ खास, मतलब मैं किसी एक पर पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ कि ठीक है आप कीजिए और फिर करेंगे रात को पार्टी, शाम को या कभी भी, मतलब है ना, इस तरह की चीजें होती हैं।
1: ये होता है कुछ लोगों का, लेकिन जो हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति जैसी जो स्वस्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज्ञान से विज्ञान की ओर जो है वो ले जाती है, जो शुद्ध ज्ञान का जो ज्ञान करवाती है, वो उसका ये लाइफ लॉन्ग काम होते हैं। चाहे हमारा, चाहे साहित्य का देख लो आप, छोटे छोटे साहित्य जो है वो लाइफ लॉन्ग निकलता है।
0: ज्ञान विज्ञान समिति और क्या क्या काम करती है, इस पर हम जरूर।
1: ज्ञान विज्ञान समिति जो है वो वॉलेंटरली जो है स्वयंसेवी रूप से बहुत सारे इश्यूज, चाहे हमारे जन चेतना के इश्यू हैं, चाहे हमारे पंचायती राज का मुद्दा है, चाहे हमारी साक्षरता समता या जेंडर सेंसिटाइजेशन का मुद्दा है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर अच्छे से बात करने का मुद्दा है, जितने सारे इश्यूज हैं उन सब के ऊपर जो वो ज्ञान संस्कृति काम करती है।
0: जी हाँ, हम जरूर आपसे इन सभी मुद्दों पर एक एक करके बाद में भी बात करेंगे, फिर और किसी दिन किसी और कार्यक्रम में। फिलहाल आपने आज इस विषय पर जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू रेडियो गुंजन, ऑल द बेस्ट।
0: थैंक यू जी। तो श्रोताओं, सुना आपने कि क्या सोच लेकर के चली है ये हिमाचल की ज्ञान विज्ञान समिति, और आप भी अगर इसमें आना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, साथ में काम करना चाहते हैं, तो आप भी ले सकते हैं इसमें पार्टिसिपेशन, इसके मेंबर बन करके आप भी समाज सुधारक के कार्य कर सकते हैं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप कहीं से भी पता कर लेंगे तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। वैसे तो किसी के साथ जुड़ने की क्या ही ज़रूरत होती है, अगर हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी छोटे छोटे कार्य जो हैं वो हैंडल कर लें, मतलब अपने ऊपर ही ले लें कि ठीक है, अगर हमें ये लग रहा है समाज में कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, पहले तो खुद पर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अगर खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और सामने वाले को टोकेंगे तो वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर भी तो उसके सामने वैसा होना चाहिए ना।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानी। और अब आ रहा है खूबसूरत फिल्म का आशा भोसले द्वारा गाया ये बड़ा ही प्यारा सा गीत। गीत बड़ा ही अलग स्टाइल का है तो कुछ ऐसा वैसा ना समझिएगा, वैसे ही हमें पसंद आया और हमें लगा कि भाई आपको सुनवाया जाए।

भाई नियम जब बोझ लगने लग जाता है ना, तो फिर उसे तोड़ना ज़रूरी ही होता है, वरना ऐसा नहीं है। नियम के साथ जब हम चलते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी कई बार आसान भी हो जाती है। इसलिए नियम कैसे हैं और उन पर, मतलब उसमें बार बार थोड़ी थोड़ी समय के बाद बदलाव भी तो होने चाहिए। अगर वही घिसे पिटे से नियम जो शुरू में बनाए हैं वही चलते रहेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना। इसीलिए शायद इस फिल्म में ये कहा गया है कि सारे नियम तोड़ दो। और आप यकीन जानिए कि हमारा ऐसा कोई भी मैसेज नहीं है रेडियो गुंजन द्वारा आप लोगों तक पहुंचाने का कि आप नियम पर ना चलें। ये तो एक हल्का फुल्का सा गीत था, अच्छा लगा, हमने आप तक पहुंचा दिया। इक्यानवे दशमलव 2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब हम आपको बता रहे हैं कि आज है राष्ट्रीय नर्स डे। वैसे तो ये राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में मनाया जाता है 6 मई से लेकर के 12 मई तक। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये पूरी दुनिया में हर साल 12 मई को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये केवल एक दिन मनाया जाता है और हमारे देश में 6 से लेकर के 12 मई तक इसको एक सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। महत्व ये है कि 12 मई आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरिंग नाइटिंगेल का जन्मदिन है, जिन्हें लेडी विद द लैंप के नाम से भी जाना जाता है। और ये समाज में नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए एक तिथि है। इस बार का थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। नर्स दिवस का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले 1953 में डोरोथी सदरलैंड द्वारा रखा गया था, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 1965 में ICN द्वारा स्थापित किया गया था। और 1974 में 12 मई को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में नामित किया गया। लेडी विद द लैम्प के रूप में प्रसिद्ध हुई फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने स्वच्छता और रोगी देखभाल मानकों में उल्लेखनीय सुधार किया। और भारत में इस दिन को एम्स और मणिपाल विश्वविद्यालय जैसे स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है, जिसमें शामिल हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुकरणीय सेवा के लिए नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया जाने वाला ये एक पुरस्कार है, और नर्सिंग पेशे में चुनौतियों और प्रगति पर चर्चा करने के लिए दीप प्रज्वलन समारोह, सेमिनार्स और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। और जन जागरूकता के माध्यम से नर्सों की भूमिका को स्वास्थ्य सेवा के रीढ़ और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के रूप में उजागर करने के लिए ये अभियान होता है। तो सल्यूट है उन सभी नर्सों को, चाहे वो हमारे भारत की हों या बाहर के देशों की, भाई कार्य तो वो सभी एक जैसा ही करती हैं। ही बीमार लोगों की सेवा, लेकिन यहाँ पर नर्सेस को भी ज़रूरत होती है विश्राम की, कभी कभी वो भी बीमार हो जाती हैं, उन्हें भी सेवा की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो स्वस्थ होती हैं और निष्काम सेवा करती हैं लोगों की, जो कि हम मानते हैं कि वो करती ही होंगी, कई जगह से शिकायतें भी आती हैं कि भाई अच्छा जो सेवाएँ हैं वो नहीं मिल रही हैं, या बोलचाल उनका अच्छा नहीं है, या जो भी है, कभी उनकी परिस्थिति में जाके भी देखिएगा कि सारा दिन भर वो कितने सारे लोगों को हैंडल करती होंगी, किसी की मानसिकता कैसी है, कोई कुछ बोल के चला जाता है, कोई कुछ, ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई जो है वो सुन करके चुप हो जाए, क्योंकि आखिरकार वो भी तो इंसान ही है ना।

श्रोताओं, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर, लेकिन फिलहाल डरिए मत, हम भी डर जाते हैं। तो अभी भी हैं हमारे पास कुछ एक मिनट, 10 मिनट हैं, उसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं और कुछ गीत आपको सुनवाए जा सकते हैं। वैसे अभी तो बाहर बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये गीत एवरग्रीन ही होता है। अलका याग्निक का गाया, आइए सुनते हैं।

आपको श्रोताओं कार्यक्रम में अब चलते चलते हम आपसे बात करना चाहते हैं यही जो आजकल का माहौल है उसके बारे में। देखिए चुनावों का माहौल तो है ही और लोग जो है ना वो किसी भी तरफ जो है वो खुश नहीं है, मतलब और अगर कहीं ओवरऑल त्रस्त ही हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो कुछ एक गिने चुने नाम हैं उनके अलावा उन्हें कोई विकल्प मिल सकता है या नहीं। तो अपने आसपास नज़र डालिए और ये देखिए कि अगर कोई अकेला भी खड़ा हो गया, मान लीजिए निर्दलीय भी खड़ा हो गया है और आपको लगता है वो व्यक्ति ईमानदार है, उसके साथ बेशक कोई नाम नहीं है, पीछे बैक सपोर्ट भी नहीं है, ज़्यादा काम करवा सकता है आपके, आगे जा करके आपके लिए लड़ सकता है, आपके पक्ष में कुछ बात रख सकता है अधिकारियों के सामने जा करके, कागजी कार्यवाही जो है उस करने में सक्षम है और ईमानदार है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए बिना किसी लालच के, बिना ये देखे कि उसके साथ कोई पार्टी है या नहीं है। और वैसे भी ये जो सारी बातें होती हैं ना, ये अपने हाथ में ही होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है, आपको कोई भी पसंद आ सकता है। यहाँ पे हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे फ्यूचर की बात है कि आगे आने वाले समय में जो भी प्रतिनिधि हम चुन करके लेकर के आएंगे अपने प्रदेश के लिए, वो हमारे प्रदेश को कितना आगे बढ़ाते हैं। बहुत सोच समझ करके चुनाव कीजिएगा। और बिल्कुल भी ऐसा ना सोचिएगा कि भाई क्यों जाना है, कुछ होता तो नहीं हमेशा ही। और हमेशा ही हम ये सोच करके वोट देते हैं कि इस बार शायद कुछ अच्छा होगा और बाद में हमें वैसा ही सब कुछ देखने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। अपने मत का उपयोग ज़रूर कीजिए क्योंकि फिर आपको ये बहुत समय के बाद ही मिलने वाला है। और इसी बात के साथ, इन्हीं इसी गीत के साथ अब हमें भी कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दे दीजिए। तो ज्योति पठानिया कहती है आपको बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलर्ट सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कवर्ड, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 सीसीटीवी, एसी नॉन एसी, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड आईपीएच गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब पीजी, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, मिलाते नहीं, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट कैसा है?
4: ये तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है?
4: हाँ।
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा, ले लो फिर।
4: हाँ हाँ, ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: अरे सचिन, तुम्हें क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो?
1: क्या बताऊँ रुचिका, मेरी बेटी कोचिंग के लिए धर्मशाला जा रही है, पर आजकल का माहौल देख कर ना थोड़ा दिल डर सा जाता है।
0: अरे इसमें डरना क्या है, फिक्र मत करो, सिद्धबाड़ी में होमली हब पीजी खुल गया है, बेटियों के लिए बिल्कुल घर जैसा सुरक्षित माहौल।
1: अच्छा?
0: बिल्कुल, जानोगे ना इनकी खास सुविधाओं के बारे में तो ऐसे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
1: अरे बिल्कुल बताइए ना रुचिका।
0: बायोमेट्रिक एंट्री, वन नाइट अलाउड सीधे पेरेंट्स तक, साफ सुथरे बड़े कमरे, पर्सनल कम्फर्ट, अलग स्टडी रूम, इंडक्शन माइक्रोवेव व फ्रिज वाली स्पेशल पेंट्री, साथ ही 24/7 CCTV, AC नॉन AC, अगर वो चाहते हैं तो वो ऑप्शन उनके लिए है, सिंगल डबल या फिर ट्रिपल शेयरिंग रूम उनके लिए खास सुविधा, और साथ ही शुद्ध व पौष्टिक शाकाहारी खाना।
1: अरे वाह, इतना सुरक्षित स्थान, पर रुचिका ये तो बहुत महंगा होगा ना?
0: अरे कैसी बातें कर रहे हो सचिन, इनकी तरफ से लड़कियों के लिए ये खास सुविधाएं शुरू हो रही हैं मात्र 7,000 रुपए से।
1: अच्छा, पर रुचिका ये है कहाँ सिद्धबाड़ी में?
0: सिद्धबाड़ी तपोवन रोड IPH गेस्ट हाउस के पास गुंजन संस्था में। तो अगर आप सभी भी अपनी बेटियों के लिए ढूंढ रहे हैं सुरक्षित स्थान तो अभी संपर्क करें 7831989044।
1: नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 7831989044 पर।
0: होमली हब PG, जहां बेटियां रहती हैं सुरक्षित और माता पिता रहते हैं निश्चिंत। ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, JEE, CUET और NDA के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: अध्ययन बताता है कि धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। कुछ ही दिनों में आपके शरीर में निकोटीन की मात्रा कम हो जाती है और 12 महीनों में हृदय रोग का खतरा भी आधा रह जाता है। लेकिन अभी धूम्रपान की वजह से आप दिल के दौरे के बेहद करीब हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कष्ट जानलेवा है, तंबाकू आज ही छोड़ें।
2: किसी ने खूब कहा कि जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं है, मिलाते नहीं है, छोड़ देते हैं, शांत छोड़ देते हैं, ताकि गंदगी जो है वो नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी जब परेशानियां आए तो बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, यकीन माने सही समाधान।
3: सुनो,
4: क्या है
3: ये सूट? कैसा है
4: ये? तो बहुत अच्छा है।
3: अच्छा है
4: हाँ?
3: लेकिन ये 20,000 रुपए का है।
4: बस 20,000 था? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते, ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे।
3: अच्छा ले लो फिर।
4: हाँ हाँ ले लो ले लो।
3: चलो तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया।

0: Yes!
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ एक बार आप सभी फिर से जुड़ चुके हैं इस बहुत ही खास कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं दोस्तों, कार्यक्रम की एक और कड़ी लेकर आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम मन संवाद, एक प्रयास मन की ओर। तो हमारा ये प्रयास कितना आप सभी तक पहुंच रहा है, ये तो आपके फीडबैक या फिर आपके सवालों से पता चलेगा। और आई होप सो कि आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल और बहुत अच्छी अच्छी जो हमें एडवाइस दे रहे हैं या दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से आप सभी का सहयोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में बना रहना चाहिए। तो स्वागत है मैम आपका इस बहुत ही खास कार्यक्रम में, बहुत ही खास बातचीत में, जिसमें कि हम अपने दोस्तों के लिए बहुत ही खास खास जानकारियां उनकी अवेयरनेस के लिए लेकर आते हैं।
2: थैंक यू सो मच रुचिका
1: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
2: हम अच्छे, आप कैसे?
1: बहुत बढ़िया। तो मैम, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर हम यही सुनते हैं कि पर्सनालिटी किस तरह से मेंटेन करनी है, बस यही सोचते हैं हमेशा। और एक दूसरे से बस दिखावे के लिए हम एक तरह से जेलेसी फैक्टर भी आ जाता है कि नहीं,
2: कॉम्पिटिशन
1: है ना, कॉम्पिटिशन बन जाता है। बट डिसऑर्डर की तरफ जो है हमारा ध्यान नहीं जाता, तो इसीलिए हम अपने दोस्तों को इस बारे में जानकारी पिछले कड़ी में पहुंचाई थी। और हम क्लस्टर्स की बात कर रहे थे, तो ए बी क्लस्टर की हमने बात की थी। तो मैम थोड़ा सा शॉर्ट में हम अपने दोस्तों को उसको एक बार रिकैप करें।
2: बिल्कुल जी। देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके थॉट, इमोशंस और व्यवहार क्रोनिकली यानी कि बहुत लंबे समय तक एक जैसे ही रहे हैं, उनका एक प्रकार का बिहेवियरल पैटर्न है जो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट है, वो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं है, वो बार बार रिपीट होता है। और जब ऐसा होता है तो उनको या उससे भी ज्यादा उनके आसपास के जो एनवायरनमेंट में लोग प्रेजेंट होते हैं, उन्हें दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिनको होता है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है, उन लोगों को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिन्हें है, उन्हें इंसाइट ही नहीं होती, अवेयरनेस ही नहीं होती कि हम में भी कोई प्रॉब्लम है या हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिसमें लोगों को एक प्रकार की अवेयरनेस होती है, इंसाइट होती है कि ठीक है, मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब ऐसे लोग थेरेपी सेशंस के लिए आते हैं, तब उनमें इम्प्रूवमेंट्स देखना ज्यादा आसान और बेहतर हो जाता है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप ही नहीं बचता, क्योंकि उनमें इंसाइट ही नहीं होती अबाउट देयर रॉन्ग बिहेवियर्स और अनहेल्दी बिहेवियरल पैटर्न्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को साइकोलॉजी में तीन अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है। हम लोग पिछले जो सेशन था उसमें हम लोगों ने क्लस्टर ए और बी को अंडरस्टैंड किया।
1: बिल्कुल।
2: क्लस्टर ए में हमारे थे पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसमें हमारा स्किज़ोटिपल एंड स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी थे। ऑन द अदर हैंड, क्लस्टर बी में हमने डिस्कस किया था बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद अब बात आती है क्लस्टर सी की, क्लस्टर सी जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड OCPD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आज तक आपने OCD सुना होगा या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सुना होगा, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी है जहां पर हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में ऑब्सेसिव और कंपल्सिविटी के ट्रेट्स को देखते हैं।
1: सबसे बड़ी बात तो मैंने पहले कहा ना मैम कि हमारे लिए तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम ही नया है, लेकिन उसके आगे भी कुछ और कैटेगरी है, तो ये तो और ज्यादा हमारे लिए जानने के लिए ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करेंगे कि आप भी इसे बहुत अच्छे से सुनेंगे और बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे, और अगर ऐसा हो तो हमें कितना केयरफुल रहने की जरूरत होती है और किस तरह से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं इन सारे डिसऑर्डर्स से। तो फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम फिर से वापस आते हैं अपनी इस पर्सनैलिटी को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए, डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। तो बने रहिए आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से इस छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी के इस मनपसंद कार्यक्रम मन संवाद एक प्रयास मन की ओर। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की क्लस्टर सी की। तो मैम आपने अभी इस छोटे से ब्रेक से पहले बात की क्लस्टर सी में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अवॉइडेड डिसऑर्डर के बारे में। तो उसमें किस तरह से पर्सन को चीजें फेस करनी पड़ती हैं या कैसे पता कर सकते हैं हम कि वो जो कैटेगरी है हम में आनी शुरू हो गई है?
1: देखिए, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो व्यक्ति होते हैं जिनमें एक प्रकार का फियर बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट रहता है, और वो फियर होता है फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ बीइंग जज्ड और फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड। ऐसे लोग वो होते हैं जिन्हें अपनी बुराई या अपनी खामियां अगर उन्हें कोई बता दे तो उन्हें बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, पिंच हो जाता है, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, और यहीं से ही उनके बाकी के बिहेवियर्स ऑपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सोशल इंटरेक्शंस या फिर सोशल रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं कर पाते। उनका लाइफ का बिगेस्ट चैलेंज ही यही रहता है कि वो रिलेशन में अगर लेट्स से आ भी जाते हैं तो भी उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और वो कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है अपनी गलतियों पर नजर डालना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उन पर काम करना, और यही सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है।
0: गलती एक्सेप्ट करना, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। सब सही बात है ये मैम की हर कोई, हमें क्या आदत होती है ना दूसरों को ब्लेम कर देना, लेकिन कभी भी अपनी गलतियों पे काम करना ये तो हमारे लिए जैसे आफत ही हो जाती है। तो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं?
1: देखिए, जो भी जैसे अवॉइडेंट है और इसके बाद जब हम लोग डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे, तो देखिए ये दोनों ही पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल के आधार पे डेवलप होते हैं। अटैचमेंट स्टाइल की अपनी एक बहुत ही आसान सी थ्योरी है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं
0: जी।
1: ऐसे मानिए कि अगर एक छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम को लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है और पेरेंट्स अपने ही किसी परेशानी में या किसी परिस्थिति में व्यस्त हैं, और वो गया और बोला पापा पापा देखो क्या हो गया, उसको चोट लग गई लेट से, देखो क्या हो गया, लेकिन पापा ने उसको अच्छे से एड्रेस करने की बजाय उसको डांट दिया कि ये क्या करके आए हो, मैं तो बोलता हूँ तुम काम ठीक से नहीं करते हो, मुझे काम करने दो, खुद तो कुछ किया नहीं, मुझे भी नहीं करने दोगे, जाओ उधर जाकर बैठ जाओ। अब ये बच्चा ऐसे बिहेवियर के बाद अपने पापा के पास के दोबारा जा पाएगा कंफर्टेबली?
0: बिल्कुल भी नहीं।
1: नहीं, यानी कि बचपन में ही जो एक चाइल्ड और पेरेंट का कनेक्शन होता है, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, जो बॉन्ड है, उसके आधार पर बच्चा ये परसीव करने लगता है कि क्या मैं अपने चैलेंजेस या नीड्स को सामने वाले व्यक्ति के पास ले जाने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं, मैं सामने वाले व्यक्ति पर कितना रिलाई कर सकता हूँ या नहीं, ये सब डिपेंड करता है कि एक पेरेंट चाइल्ड को कैसे डील करता है।
0: बिल्कुल सही कहा दोस्तों मैम ने, क्योंकि अक्सर वही बात बार बार एक ही बात आती है। बच्चों से जुड़ी बात करें तो मेन रोल जो आता है वो पेरेंट्स का ही आता है कि पेरेंटिंग किस तरह से है। पेरेंट्स बोलना तो आसान है लेकिन उस रोल को निभाना उतना ही मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि माँ बाप जो है सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस वर्क या जो भी है घर का काम, और शाम को उनका भी ये होता है कि नहीं अब जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन, या तो दिन भर का गुस्सा जो होता है उनके दिमाग में चल रहा होता है और एकदम से बच्चे ने आके कुछ पूछ लिया तो वो उसे डांट डपट कर शांत करा देंगे या तो उसे साइड भेज देंगे, रूम में भेज देंगे। तो बच्चा जो तभी तो आज का टाइम ये इसलिए आया है कि बच्चा खुलकर पेरेंट्स से बात कर ही नहीं पाता है। वो अपने मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी उसको परेशानियां हो रही हैं, चाहे स्कूल में उसके साथ किसी की लड़ाई हो गई है, कल को उसको पता नहीं किस सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन वो पेरेंट्स से खुलकर बात, क्योंकि उसे पता डांट पड़ेगी।
1: उसको यही है कि पेरेंट को पता ना वो मुझे बहुत डांटेंगे या वो परेशान हो जाएंगे, और परेशान होंगे तो क्या होगा, मुझे
0: डांट पड़ेगी।
1: तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करना सीख ही नहीं पाते, और यहीं से फिर शुरुआत हो जाती है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल जो है वो आम व्यक्तियों में भी होता है, लेकिन जब ये अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल एक बड़े रूप में अपनी उनकी पर्सनैलिटी में एक जब छाप छोड़ जाता है तब जाकर वो बनता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
0: बिल्कुल, तो अवॉइड करना तो खैर जब हमें कोई अवॉइड करे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ अपनी अंदर की जो हमारी कुछ ऐसी बोलते हैं हैबिट्स होती हैं, उन्हें सुधारना, तभी हम सुधार पाएंगे जब हम उसे अच्छे से रियलाइज कर पाएंगे. समय के साथ उन्हें पहचानना, समय के साथ उस चीज को समझना, और उसके लिए मैम मुझे लगता है कि जरूरत रहती है हमें खुद को समय देने की. पेरेंट्स का समय बच्चों के लिए अलग बात है, लेकिन बच्चे भी खुद को समझने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने क्या किया है, कहाँ कमी रही है, कहाँ उन्होंने अच्छा भी किया है. जरूरी नहीं हम कमी की बात करें, कुछ चीजें अच्छी भी हुई होती है उनके साथ.
1: बिल्कुल, देखिए इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, तो आपको एक नया पहलू समझने को मिलेगा.
0: जी,
1: असल में क्या है, जब हम लोग डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं ना रुचिका, तो यहाँ हम लोग बड़े बड़े ट्रॉमास के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि रिपीटेटिव बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब पेरेंट्स इस प्रकार का बिहेवियर रिपीटेटिवली करेंगे, तब जाकर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होगा और वहां से शुरुआत होगी, वो एक बीज डल जाएगा और फिर बड़ा होकर पेड़ क्या बनेगा, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो ये बात है तब की जब इंटेंसिटी ड्यूरेशन और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, रिपीटेशन है. तो बच्चा अपने पेरेंट के साथ कैसे एसोसिएट करेगा, इसी प्रकार से कि छोड़ो उनके पास जाके प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं,
0: नहीं
1: हो, मुझे खुद से ही करना पड़ेगा. तो वो खुद से ही हर चीज करेगा, और खुद से करने के चक्कर में क्या होगा, वो दूसरों के साथ एसोसिएशंस क्रिएट करना नहीं सीख पाएगा. यहाँ तक कि जब भी कोई भी ऐसा चैलेंज आएगा बड़े होने के बाद, एज एन एडल्ट कोई रिलेशनशिप में है, रोमांटिक रिलेशन लेट्स से, या कोई फ्रेंडशिप है, वहाँ कोई चैलेंज आता है और सामने वाला पार्टनर कहता है कि नहीं इस बारे में मुझे बात करनी, तो बोलेगा मुझे कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उनके लिए वो चीज एक प्रकार से बहुत एंजाइटी क्रिएट करेगी, उनको वो बहुत एंग्जियस फील देगा. क्योंकि जब जब बचपन में वो अपने पेरेंट के पास जाते थे टू कन्फ्रंट व्हाट दे आर गोइंग थ्रू और व्हाट दे आर यू नो इनसाइड ऑफ देम, जो हो रहा है, जो असल में उनके ऊपर जो बीत रही है,
0: थॉट्स चल रहे हैं,
1: जो भी उन्होंने शेयर किया, उसके बाद क्या मिला उन्हें, उन्हें मिला
0: डांट,
1: उन्हें मिला निगलेक्ट, उन्हें मिला नॉट सो केयरिंग रिस्पॉन्स. तो उनको ये लगता है कि मैं ये डिजर्व ही नहीं करता, और क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, या सामने वाला मुझे वो देगा ही नहीं, या सामने वाला शायद उतना कैपेबल ही ना हो, इनफैक्ट यहाँ तक कि मुझे चाहिए ही नहीं, तो व्यक्ति एक समय के बाद गिव अप कर चुका होता है. तब जाकर अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होता है और वहां से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शुरुआत होती है.
0: बिल्कुल, तो इसके बारे में हम और भी जरूर जानेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले फिर से चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, उसके बाद फिर से आप सभी से मिलते हैं. कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: प्रियशी के साथ.
0: जी, तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत.

0: दोस्तों एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप सभी अपने इस बहुत ही खास कार्यक्रम और खास बातचीत के साथ। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डिफरेंट कैटेगरीज की, क्लस्टर्स की, सी क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं आज की इस खास बातचीत में। तो आइए मैम से जानते हैं, बहुत कुछ जानने को है, बहुत कुछ जो है आपके लिए अवेयरनेस से जुड़ी बातें हैं, तो जरूर इन बातों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगी। कहीं ना कहीं जब हम बच्चों को समझ नहीं पाते हैं या बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं, या हमें जो ये मैम ने कहा कि जो ये बिहेवियर बार बार जो हम रिपीट करते जाते हैं, तो एक ऐसी स्टेज में फिर हम पहुंच जाते हैं जो ये डिसऑर्डर हम फेस करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये चीजें हो रही हैं तो इसके किस चीज में हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो यही सब जानकारियां आप सभी के लिए लेकर आते हैं ताकि आप इन चीजों से ना गुजरें, और अगर गुजर रहे हैं तो शुरुआती दौर में ही अपने आप को संभाल लें और बच्चों की जिंदगी को संभाल लें। तो मैम हम बात कर रहे थे अवॉइडेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, हमने बात की, और अभी हम बात करते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। तो उसमें हम किस तरह से मतलब कि उसे किस तरह से फेस करते हैं?
1: देखिए, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है इसके पीछे भी एक अटैचमेंट स्टाइल है।
0: ओके,
1: उसको बोलते हैं डिपेंडेंट अटैचमेंट स्टाइल, है ना
0: जी।
1: उसको एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल भी बोला जाता है। देखिए, ये उन बच्चों में डेवलप होता है ये पर्टिकुलर डिसऑर्डर जो बचपन में अपने पेरेंट्स के पास गए और उन्होंने एक बार बोला कि हाँ बेटा चलो चलो क्या हो गया, हम आपकी मदद करते हैं, और दूसरी बार बोला कि हर बार मेरे पास ही आ जाता है, चल दूर हटो।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ पर आ गई कंफ्यूजन। तो पहले तो
0: आराम से
1: आपने रेपिटेटिव

0: basically बच्चे को हर काम में सहायता दी,
1: बिल्कुल
0: बच्चे को आपने अटोनोमी नहीं सिखाई, बच्चे को आपने डिपेंडेंट कर दिया, और अब आप कह रहे हो कि चलो हटो खुद से करो जाके।
1: एकदम से
0: एकदम से आपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनने के टूल्स नहीं सिखाए। ऐसे में बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे को जीवन के चैलेंजेस को फेस करते वक्त ये लगेगा मैं परेशानी में हूं तो मैं अपने सीधा पेरेंट्स के पास भागू, पेरेंट्स के पास जाएगा और हर बार जाएगा, क्योंकि उसके पास अपने चैलेंजेस को सॉल्व करने के टूल्स ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है परेशानी सॉल्व कैसे
1: कैसे
0: होगी या करना क्या है।
1: बिल्कुल
0: अब ऐसे में पेरेंट्स को भी बहुत प्राइड फील होता है कि ओके देखा मैंने बोला था मेरे पास आओगे तो ही तुम्हें सोल्यूशन मिलेगा,
1: बिल्कुल
0: पर एक समय ऐसा आएगा जब पेरेंट्स बोलेगा अब तो मैं नहीं करूंगा, अब तो तुम्हें खुद से करके देखो, तो यानी कि बच्चे के पाँव से आपने तुरंत जमीन खींच ली, अब बच्चा घबरा जाएगा। अब जो बच्चा घबराएगा उसको एंजाइटी फील होगी, उसको इनसिक्योरिटी होगी कि अब मैं क्या करूं, अब उसे पता ही नहीं है कि प्रोसेस कैसे करना है, कि मैं अपने आप को फंक्शनल कैसे रखूं, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। इस तरह के अटैचमेंट स्टाइल को बोलते हैं डिपेंडेंट और एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल। इसमें एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर फियर काफी रहता है। फियर किस चीज का, इस चीज का कि मैं अकेला रह गया तो
1: बिल्कुल और होता है अक्सर बच्चों के साथ ऐसा होता है।
0: मैं अकेला रह गया तो मैं कैसे संभालूंगा चीजें, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे किसी की सपोर्ट की ही जरूरत है। तो उनके अंदर डिपेंडेंसी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी ऑन देयर रिलेशंस। धीरे धीरे ये उनके पर्सनैलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत वाइटल पार्ट बन जाएगा, और आने एज एन एडल्ट उनके अंदर ही डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना रुचिका, ये लोग अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले पाते हैं,
1: डिपेंडेंट हो चुके
0: डिपेंडेंट
1: होते
0: हो
1: हैं।
0: चुके होते हैं। सो दीज आर द वंस हु विल सीक वैलिडेशन, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, गलत तो नहीं कर रहा हूँ।
1: मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका
0: हाँ,
1: मतलब डेवलप ही
0: लो
1: नहीं हो पाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो लो कॉन्फिडेंस में रहेंगे, वो अपनी वर्थ को डाउट करेंगे, अपने पोटेंशियल को डाउट करेंगे, वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में उनको काफी चैलेंजेस आएंगे। लेकिन क्योंकि इनसाइट होती है इस प्रकार के सिनेरियो में अधिकांश लोगों में, तो अधिक वो उसके अकॉर्डिंगली इनमें जो इम्प्रूवमेंट है वो इजीली देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर चैलेंज को फेस करना पड़ता है, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, उसको बिल्ड करना पड़ता है। इवन इन थेरेपीज वी बिल्ड अ पर्सन सेल्फ वर्थ, वी बिल्ड हाउ अ पर्सन परसीव्स देमसेल्व्स, वी बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस एज वेल। तो जब ये चीजें पॉसिबल हो जाती हैं तो एक व्यक्ति का डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनना भी पॉसिबल हो जाता है।
1: तो मैम ये क्या मतलब एनवायरमेंटली ऐसा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से ही ये डिसऑर्डर हमें फेस करना पड़ता है, मतलब बच्चों को या पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ फिर डील करना मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए कोई भी, सिर्फ यही नहीं, कोई भी डिसऑर्डर होता है ना, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, तो उसमें तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तीन चीजों से बेसिकली, ऐसा माने कि तीन तत्व हैं, ये तीन तत्वों से मिलकर हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजी, एक व्यक्ति का बिहेवियर डेवलप होता है। वो क्या है, व्यक्ति की खुद की सोच और खुद की वैल्यूज, खुद का एक जो विवेक होता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग विवेक है। दो बच्चे जो सेम वातावरण में पले बड़े हों, जिनको सेम प्रकार की शिक्षा, सेम स्कूल में भेजा गया हो, सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सेम जीन्स हों, वो दोनों बच्चे भी अलग अलग निकलते हैं।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि दोनों व्यक्ति, हर व्यक्ति का एक अपना यूनिक माइंडसेट होता
1: सोचने
0: है।
1: का अलग तरीका है।
0: तो ये हो गया उनका माइंडसेट। दूसरा होता है उनका सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि उनका परिवार, उनके परिवार में उनके रिश्ते कैसे हैं, परिवार वालों के आपस में रिश्ते कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, स्कूल में टीचर्स कैसे हैं, व्यक्ति के एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं लाइफ में। और तीसरा होता है हमारे जीन्स, हमारे फैमिली में एंसेस्टर्स से हमें क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है, हमारी हेरिडिटी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमारे डीएनए में क्या कुछ है। ये इस प्रकार से है, जैसे कि कोई व्यक्ति था जो कभी भी दारू नहीं पीता था और उसको लिवर कैंसर हो गया, समझ रहे हैं? अब इसका कॉज क्या उसकी हैबिट थी या बिहेवियर था? नहीं। क्या इसलिए हो गया क्योंकि उसके पड़ोसी या उसका भाई, बड़ा भाई पीता था? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी बच गई? जेनेटिक्स। तो जीन्स की वजह से उसको ये चीज ट्रिगर हो गई। सिमिलरली विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगर हमारे एंसेस्टर में ऐसा कोई व्यक्ति रहे हैं, ऐसे कोई पूर्वज रहे हैं जिनको लेट्स से कोई इसी प्रकार का मूड डिसऑर्डर था, तो हमारे अंदर जरूरी नहीं है कि हमने लाइफ में बड़े ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस देखे ही हों, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा ही हो, या फिर हमने बड़े पॉवर्टी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हों, हमने बड़े हताश रहे हों अपने जीवन में, ऐसा भी नहीं है। ना ऐसा है कि हमारे माता पिता हमसे प्यार नहीं करते, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम भी काफी अच्छा है। तो भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, उस मूड डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स में है और वो जीन्स स्ट्रेस के कारण या किसी भी रीजन के कारण वो ट्रिगर हो गई तो होगा। तो इस प्रकार से बात होती है रुचिका। तो इसीलिए किसी भी एक व्यक्ति पर या जैसे पेरेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से डेवलप होता है। उन पर पूरी तरीके से ब्लेम नहीं डाला जा रहा है, पेरेंट्स पर ब्लेम नहीं डाला जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ इस बारे में बात करी जा रही है कि कैसे एक बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है जिसकी जड़ें हमारे बचपन में नो घुसी हुई होती हैं, बचपन से वो जड़ें आ रही होती हैं। तो अगर हमें काम करना है अपने ऊपर, तो हमें अपने ऊपर वो अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, हमें वो रेजिलियंस रखना पड़ेगा। या जबकि आज के समय के जो लोग, जो हम लोगों की जनरेशन के जो लोग हैं, वो लोग जो न्यू पेरेंट्स बन रहे हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इस प्रकार के कोई मिस्टेक ना करें।
1: बिल्कुल। तो ये बातें जब हमारे सामने या हमने सुनी होती है और हमारी लाइफ में अक्सर जब ये होने लगती हैं, तब हमें रियलाइज हो जाता है कि हम में शायद ये चीज डेवलप हो रही है, तो उसमें हमें काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए आप सभी तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से आप सभी से मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं और जितनी एनर्जी और जितने उत्साह के साथ हम आप सभी तक ये जानकारियां पहुंचाते हैं ना, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने आप को उतनी ही एनर्जी के साथ जागरूक करते होंगे और अपने जो आसपास के आपके करीबी लोग हैं उन तक भी आप ये सब जानकारियां पहुंचाते होंगे, क्योंकि हर कोई नहीं जान सकता है या नहीं उन तक ये जानकारी अगर पहुंच रही है तो अगर आप सुन रहे हैं तो आप उन तक ये जानकारी पहुंचाएं, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि किसी का भला करना ना, एक चेहरे पर मुस्कान, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो बस दिल को सुकून मिल जाता है कि नहीं, कुछ तो अच्छा किया है। तो फिलहाल दोस्तों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खास आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात। तो आइए और भी जानते हैं कि और किस किस तरह के डिसऑर्डर हमारे में पनपते हैं या जागृत होते हैं। तो मैम, हमने अवॉइडेड की बात की और डिपेंडेंट की बात की और अभी हम बात करने वाले हैं OCPD जी। तो आइए बढ़ते हैं बातचीत में आगे और जानते हैं मैम से कि आखिर ये कौन सी बला है, कौन सा डिसऑर्डर है OCPD। तो मैम प्लीज हमारे दोस्तों को इसके बारे में बताइए।
1: देखिए, OCPD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर
0: जी।
1: इसमें दो टर्मिनोलॉजीज हैं, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव। अधिकांश लोगों ने OCD टर्म सुना होगा और कुछ लोग जानते भी होंगे कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, पर ये जो डिसऑर्डर है ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ ऑब्सेसिव और कंपल्सिवनेस के ट्रेट्स लेकर आता है। तो ये OCD नहीं है लेकिन ये OCPD है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, ऑब्सेसिवनेस का मतलब होता है किसी एक चीज में अगर घुस गए तो घुस गए, और उससे बाहर आना या अपने अटेंशन को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना फिर हम एक व्यक्ति के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ऑब्सेसिवनेस में हमें इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, मतलब हमें बार बार वही ख्याल आएगा कि हमें वो काम सही से करना है। एक प्रकार के सर्टेन लेवल ऑफ परफेक्शन से ऑपरेट करता है। यानी कि ऐसा मानिए कि जिन लोगों को परफेक्शनिज्म का कीड़ा है ना, उनको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है काफी आसानी से। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करके चीजों को रखते हैं, बहुत साफ सफाई करके रखते हैं, और उनके इस प्रकार की चीजें उनके सिर्फ घरों में ही नहीं उनके काम में भी नजर आएगी।
0: बिल्कुल,
1: उनका ऑफिस डेस्क हो या फिर उनके कोई फाइल्स हो या फिर उनकी कोई प्रेजेंटेशन हो। यहाँ तक कि ऐसे में ना लोग, ये भी होता है कि वो अपने एंड गोल को अचीव ही नहीं कर पाते क्योंकि वो परफेक्शनिज्म में ही फंसे रह जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आता है बात कंपल्सिवनेस की। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोलेंगे कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, काम हो जाएगा, लेट्स से अगर बर्तन नहीं धुले हैं तो थोड़ी देर में धुल लेना, कोई बात नहीं
0: जी,
1: नहीं बर्तन तो अभी
0: धोने और अच्छे से धोने
1: ये वो व्यक्ति होंगे जो जिनके यहाँ पर अगर कोई मेड या हेल्पर काम करने आएंगी ना तो वो वहां पे खड़े होकर इंस्पेक्ट करेंगे कि सही से काम किया है कि नहीं, और वो उंगली से लगा के देखेंगे, देखो यहाँ पे साबुन रह गया
0: जी।
1: और ये चीज इतनी ज्यादा होगी, इतनी एविडेंट होगी कि ये हर व्यक्ति को, उनके आसपास के जितने लोग हैं ना, उन सबको ये बात पता होगी कि दिस इज व्हाट ही और शी डज। तो यानी कि ये ऐसे ट्रेट्स होंगे, देखिए आम जीवन में भी हर व्यक्ति ऐसा करता ही है, एक ना एक दिन तो हर व्यक्ति अपने हेल्पर के काम को इंस्पेक्ट करके बताएगा दैट यू नीड टू इंप्रूव,
0: लेकिन हर टाइम सर पे खड़े रहना
1: हाँ, वो पर हर टाइम, एवरी सिंगल टाइम, और सिर्फ हेल्पर के साथ ही नहीं, वो कोई भी व्यक्ति होगा ना जो उनका काम करने लगेगा वो हर उस व्यक्ति को टोकेंगे और बताएंगे देखो ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। वो उनके अंदर एक्सपेक्टेशन होगी सामने वाले लोगों से परफेक्ट काम को अटेन करने की, और वहीं से उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस में, उनके सोशल रिलेशंस में चैलेंजेस स्टार्ट होंगे।
0: बिल्कुल,
1: ये वो लोग होंगे जो लोग चप्पल अंदर कैसे आई घर के, बाहर की चप्पल बाहर ही रहनी थी, इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी और डेली होगी, ये नहीं कि वंस इन अ व्हाइल हुई, वो आम बात होती है, वो एक प्रकार का डिसिप्लिन सेट करने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर बात होगी कि डेली ही कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी ना किसी फैमिली मेंबर से, यहाँ तक कि बाहर वाले लोगों से भी हो सकता है। ऐसे लोगों का फियर यही रहता है कि हम जो एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाए, तो एक प्रकार की लो सेल्फ वर्थ रहती है, जिसको अटेन करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो परफेक्शनिज्म की वजह से पीछे पड़े रहते हैं उसी काम के ऊपर। वही परफेक्शनिज्म आगे चल के रिफ्लेक्ट होती है इन द सेंस ऑफ ऑब्सेसिवनेस इन देम, और कंपल्सिविटी एज इन कि अब ये करना है तो करना ही है, ये ठीक से नहीं हुआ तो मैं इसको सब कुछ हटा के स्टार्टिंग से फिर से करूंगा। और ये इतना टायरसम हो जाता है ऐसे लोगों के लिए कि अधिकांश समय पर वो अपने एंड गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। तो ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ना ही सिर्फ अपने सोशल रिलेशंस के लिए बट आल्सो ऑक्यूपेशनल लाइफ के लिए भी, क्योंकि वो अपने एंड गोल को अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड देन अगेन दैट विल ओनली रिजल्ट इन लो सेल्फ वर्थ। तो ये एक लूप बन जाता है और इस लूप से बाहर निकलने के लिए ही उनको फिर आगे ट्रीटमेंट के लिए आना पड़ता है। दैट इज द बिहेवियरल पैटर्न, दैट इज द पर्सनैलिटी।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बिहेवियर के साथ शायद हम खुद को भी हार्म, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि जब हमें चीजें मतलब जैसे चाहिए वैसे नहीं मिल पाती तो हम लोगों को भी बातें सुनाते हैं, मतलब हर टाइम
1: तक कि अपने आप को व्यक्ति इतना स्ट्रेस में चला जाता है वो रेस्ट नहीं करता,
0: रात को नींद
1: व्यक्ति को लगता है रेस्ट मतलब वो कहते हैं ना कि आराम हराम है,
0: हराम।
1: ऐसे लोगों को ऐसा लगता है जब तक हमारा एंड गोल अचीव नहीं होगा तब तक हम रेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव नाउ बिकम ऑब्सेस्ड अबाउट अटेनिंग दैट थिंग।
0: बिल्कुल, तो ये गए वही कि ओवरथिंकिंग का पार्ट भी होता
1: है। ओवरथिंकिंग तो एक बहुत छोटा ट्रेट होगा, ओवरथिंकिंग है इसका ट्रेट, डिस्ट्रेस भी एक ट्रेट रहेगा,
0: मतलब इसके अंडर जो है फिर हमारे साथ बहुत ज्यादा चीजें होने के चांसेस हैं।
1: हाँ बिल्कुल, जब हम ऐसे में व्यक्ति ओवरथिंक भी करेगा, तनाव में भी रहेगा, अपने आप को रेस्ट नहीं देगा, उसके पर्सनल
0: रिलेशन
1: सब खराब होंगे, छोटी छोटी बातों पर फाइट्स हो रही होंगी, और उनके लिए वो छोटी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट होंगी कि वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे करके उनका लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगा।
0: तो वो कैसे इस चीज से बाहर निकल सकते हैं? ट्रीटमेंट। बिल्कुल, तो लास्ट ऑप्शन दोस्तों देख लीजिए ट्रीटमेंट ही है, बाकी तो खैर हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, यहाँ तक पहुंचे ही ना।

0: यहाँ तक कि रुचिका हमें लगता है आने वाले समय में हम लोगों को कुछ थेरेपीज और कुछ डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग दीज थिंग्स भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे जो ऑडियंस है उनको काफी मदद भी मिल सकती है।
1: बिल्कुल, ये मेन पार्ट है कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इन चीजों को, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो दोस्तों आप सभी ने जाना कि किस तरह से हमारे में जो एक तरह से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फेस करते हैं, किस तरह से हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही बिहेवियर से अपने दुश्मन। देखिए लोगों को तो सुना है कि आजकल इंसान इंसान का दुश्मन है, लेकिन खुद खुद के दुश्मन है, ये यहाँ से पता चल रहा है। छोटी छोटी बातें जो कि अक्सर हम नजरअंदाज करते जाते हैं,
0: हमारा खुद का बिहेवियरल पैटर्न या हमारा खुद का माइंड या हमारी खुद की आदतें हमारे ही फेवर में काम नहीं कर रही होती।
1: बिल्कुल, और जब हमें ऐसा लगता है ना कि हम ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि हमें परफेक्शन के साथ, तो हमें तो ऐसा लग, और खुद को हमें ऐसा फील होता है कि नहीं हम बहुत सही हैं सोसाइटी की नजर से देखिए, क्योंकि हम हर चीज को परफेक्ट करते हैं पूरी परफेक्शन के साथ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और इसी के चलते फिर वो शायद अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं समझने के लिए और अपने बिहेवियर को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही खास बातचीत आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने सुनी है, और मैम जाते जाते हमने ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है पूरा कंप्लीट किया है, तो इस पे आप थोड़ा सा अगर कुछ एक हमारे दोस्तों को इसमें कुछ बातें बताना चाहें शॉर्ट वे में।
0: देखिए हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को ना अपने भीतर झांकते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि हम कितनी इंटीग्रिटी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सोच, हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारे बिहेवियर आपस में कितने अलाइंड है। सिर्फ बिहेवियर ही नहीं, यहाँ तक कि हमारा जीवन, हमारा लाइफस्टाइल कितना अलाइंड है, हमारे आसपास की जो रिलेशंस हैं उन रिलेशनशिप में हम जिनके साथ हम रिलेशन में हैं वो लोग कितने अलाइंड है, इस इंटीग्रिटी को चेक करते रहिए। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके अंदर आपके जीवन में आपके सोच में या व्यवहार में किसी प्रकार का पैटर्न बनता नजर आ रहा है तो उस पैटर्न को तोड़ दें। ये तो समझिए एक मूल मंत्र है जीवन का, अपने ऊपर काम करना है, ग्रोथ के टूवर्ड्स आगे बढ़ना है और सुखी जीवन जीना है, तो समझिए कि जहाँ पैटर्न दिखेगा वहां से हमें बाहर आने के लिए जी जान लगा दीजिए, पर वो पैटर्न को तोड़ दीजिए। स्पेशली तब जब हमारा पैटर्न हमारे लिए ही हार्मफुल हो या हमारे आसपास के लोगों के लिए हार्मफुल हो, तो हमें सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना है, हमें अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना है। कई बार हमारे ही करे हुए काम की वजह से या हमारे व्यवहार की वजह से हम अपने आप को तो जस्टिफिकेशन दे देते हैं ना कि हाँ हमने ये महसूस किया इसलिए हमने ऐसा किया, हैंस आई एम नॉट सॉरी, पर आप ये देखिए कि उसका इम्पैक्ट सामने वाले के जीवन में क्या हो रहा है, और जब भी कोई भी पैटर्न नजर आए उसको ब्रेक करने का पूरा संभव प्रयास करें।
1: जी दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त सुचिका और
0: प्रियशी को
1: कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी आप सभी के साथ एक नई जानकारी के साथ, नई बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज आप सभी के अपनेपन की।

वार्ता जारी है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति तो लाम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के लिए 118 सीट की जरूरत है। पार्टी कांग्रेस सहित कई अन्य दलों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गिरीश चोडनकर ने कहा है कि बैठक के बाद टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया जाएगा। उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की लीमा रोज ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवीके को समर्थन देने के बारे में बातचीत कर रही है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल गया है। इससे पहले असम के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने राज्यपाल को नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की आधिकारिक सूची सौंपी। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 126 में से 102 सीट जीतकर निर्णायक जनादेश प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार कराने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टिन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुइसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशी दोस्त रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट। हर धड़कन अनमोल है, इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे। बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

कानून दशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सार यदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनमे शशि हाजिर होई यो कार्यक्रम ले करी माटी दी महक ताशुताऊं पहले तो तुहां सारे जो ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है प्यार भरा नमस्ते है तुहां सारे ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा काम कार है से करा दे होने न क्योंकि काम कार जिड़न से अहंदे हमेशा चल दे रहन दे कने काम कार जिड़न से अहंदे कदी खत्म जिड़े से नहीं होंदे तो नंबर जिड़े से तुहां तक पहुँचाई दे न स्टूडियो दा क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे नंबर जिड़ा है से जल्दी जल्दी तुहां सारी नोट करा नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा मौसम दी ओर अगर अहां अपनी जेड़ा नज़र है से लगा दे न तो कुथी मौसम अपनी जेड़ा करवट है से ज़रूर बदला दे तो मौसम दे अनुसार चलना भी अहां वास्ते बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कने जेड़ा अहां दे किसान हैं तिना दियाँ जेड़ा चेहरे दी स्माइल है से थोड़ी देर फीकी पई हो क्योंकि तिना दे चेहरे पर जेड़ा स्माइल थी प्यागा दी अहां गल करिए मौसम दी तो कुथी मौसम प्यागा बिल्कुल साफ था कने उन्हें दी गल करन तो मौसम फिरी ते जिड़ा खराब है से होई है कने बूंदाबांदी जिड़े से शुरू होने वाली है या जिड़ा बूंदाबांदी दे आसार हैं से बिल्कुल नज़र जिड़े से ओ दे न कने मौसम कुथी न कुथी किसाना जो डरा दे तो तुहां सारे भी माटी दी मह कार्यक्रम दे सफर शहां कने जुड़ी सकदे कने अहां कने गल बात जिड़े से जरूर करी सकदे तशो तो कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ा दे आगे कने चल देना फरमाइश दी तरफ यानी कि शुरुआत कर देना कार्यक्रम दा इस प्यारे दे गीत कन्ने क्योंकि कार्यक्रम दा अगर आगाज एक प्यारे दे गीत कन्ने होइया तो कार्यक्रम च जेड़ा रौनक काला माहौल है से जरूर बनी आंदा है तो लगांदे न कार्यक्रम च रौनक तुह सारे इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला

है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहा सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत, प्यारी दी शुरुआत। शुरुआत हाँ अपने कार्यक्रम दी इस गीत कने कीती है, कने तुहा सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कने जरूर हम सफर जड़े से बनी सकते। श्रोताओ आज के दिन दी यहाँ गल करिए 6 मई 2026 दी, बुधवार का ये दिन है। कने तुहां अपने जिहड़ा काम कार हैं से करा दे होने न। आज अहां जिहड़ा गलबात करनी है, हर दिन अहां कोई ना कोई जिहड़ा विषय से अहां दा हमेशा रहिंदा है। कने तुहां भी मेरी गलबात जो भी जरूर सुनदे न, कने तिना पर गौर भी जरूर करते न। श्रोताओं रिश्तियां दी अहमियत अहां दी जिंदगी च कितनी ज़्यादा है तुहां सारे जो ही पता है। हर बार अहां रिश्तियां पर भी गलबात जिहड़े से कर देना, समय पर भी गलबात कर देना, हर चीज़ पर गलबात जिहड़े से अहां दी चलियो रहिंदी है। पर कुथे ना कुथे अज के दौर दी अहां गल करिए तां रिश्तियां दी जिहड़ा अहमियत है ना, से अहां जो समझ नहीं आती कि अहां दे जीवन च कोई भी रिश्ता ऐसा है कितना ज़्यादा अहां दी जिंदगी च अहम भूमिका अदा करता है। चाहे से भाई बहन का रिश्ता है, चाहे से माता पिता का है, चाहे कोई भी रिश्ता है। बच्चों का माता पिता कने हर कुसी का अपना अपना जिहड़ा रिश्ते न, तिना दी अहमियत अहां किस प्रकार समझा देन से अहां पर निर्भर करता है। तशो तो गल अहां करिए सोशल मीडिया, हर कोई अपना जिहड़ा ज़्यादा समय है से कुथू लगा दा। ज़्यादातर अहां अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर दिखावे वाली दुनिया च जिहड़ा से अहां लगा दें। दिखावा करना ज़्यादा पसंद है, पर जिहड़ा अहां ये बोली सकते कि अपनी फैमिली दा अहां दे जीवन च कितना ज़्यादा महत्व है, या अहां दा कोई भी रिश्ते न तिना दा कितना ज़्यादा महत्व है, सिर्फ अहां एक जिहड़ा दिखावा है से करा दे। तो हाँ सारे जो ही पता है कि विश्वास जिहड़ा से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। अगर अहां किसी पर विश्वास कर देन तां ही अहां अपने काम जिहड़े से करी पांदे न। अगर अहां खुद पर विश्वास कर देन तां ही अहां अपनी जिंदगी जो सफल बनाई पांदे न। अहां दे पेरेंट्स भी अहां जो हमेशा ही सिखांदे न कि चाहे फैमिली है, चाहे कोई भी रिश्ता है, उसकी अहमियत अहां दे जीवन च कितनी ज़्यादा है से तुहां सारे जो ही पता है। तो सोच विचार जरूर करा, क्योंकि आए दिन अहां कोई ना कोई न्यूज़ या अहां तक पहुंची आंदी है, तुहां तक भी पहुंची आंदी है न्यूज़पेपर दे थ्रू या सोशल मीडिया दे थ्रू, जिहड़ा न्यूज़ है से तुहां तक पहुंची आंदी है। तो गौर करना भी अहां दा काम है, कने अहां किस प्रकार अपने रिश्तियां जो अहमियत दे सकते या किस प्रकार तिना जो संजोई करी रखी सकते, क्योंकि यादा तो हर कोई संजोई करी रखता अपने कन्ने, तो ये रिश्ते भी अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करते न। तो श्रोताओं थोड़ा दे आगे बढ़ते न, कने जिंदगी उपर अहां गल करा दे न, क्योंकि जिंदगी दा हर लम्हा अहां वास्ते खूबसूरत होना जरूरी है। तो चल देना सुन देना इस गीत जो तुम सारे भी इंजॉय करा।

0: श्रोताओं, तस्वीर खिंचया करो यादा बन रह जानिया। ता बिल्कुल सही बोलिया कि तस्वीर खिंचना भी यहाँ दी एक याद जिड़े से जरूर रही आती है, चाहे से फैमिली कन्ने, चाहे यहाँ दा कोई भी रिश्ता है, चाहे से दोस्ती दा रिश्ता है, चाहे से कोई भी रिश्ता है, अगर यहाँ उस जो प्यार भावना नहीं निभाते न तो से जरूर निभ है, तो से निर्भर यहाँ पर करता है कि यहाँ किस प्रकार अपने जिड़ा रिश्ते न तिना दी अहमियत अपनी जिंदगी च समझते न। दर्शो तो तुम सारे सुनिया सुना दे गीत जिंदगी सोनी है। इस गीत की फरमाई शाह जो आयु वे कांगड़े ते कने तिना दा ना वे पवना जी। पवना जी तक कहाँ ये गीत पहुँचा देन कने तुह सारे भी इंजॉय करा देन कने तुह सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी रेडियो दो शशि कने। फिर ते मैं वापिस जिड़े से अपनी गलबात लेकर ही तुह तक आई हुए कने तुह सारे भी अपना अपना जिड़ा रेडियो सेट से ऑन करी लिया होने कने कार्यक्रम सुनना जिड़े से शुरू होई होने न शुरू होई हो तो जल्दी जल्दी कॉल भी करा क्योंकि तुह सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जिड़ा समय तुह तक रहेंदा है से रहेंदा है 2 से 3 बजे तक। इंतजार मत करा क्योंकि इंतजार की जिड़ा घड़ी है ना से बिल्कुल लंबी होंगी क्योंकि समय के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। नंबर तुह तक पहुँचा देन स्टूडियो का नंबर तुह सारे ही नोट करा, नंबर है 701-811-7091। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो इंतज़ार जिड़े से तुहंदा बिल्कुल ख़त्म है तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने जुड़िया। तो आज यहाँ गलबात करा दी न कि रिश्तियां दी अहमियत, रिश्तियां जो समझना अहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है से तुहां सारे जो ही पता है क्योंकि मानव जीवन का ये एक जिड़ा फैमिली वाला जिड़ा रिश्ता है या कोई भी रिश्ता है, चाहे परिवार का रिश्ता है, चाहे दोस्ती का रिश्ता है, अहां दे जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। परिवार का अहां दे जीवन च कितना ज़्यादा महत्व है, परिवार यानी कि बिना शर्त ते प्रेम करना, परिवार जो बिना शर्त ते जिड़े से अहां अपने फैमिली जो प्यार कर देन, निस्वार्थ जिड़े से अहां कोई भी काम है से कर देन, चाहे अहां असफल हन चाहे सफल हन, अहां हमेशा अपने परिवार दा जिड़ा साथ है से जरूर दिन देन। सुरक्षा कवच, चाहे अहां बचपने ते ही अपने फैमिली कन्ने अपना जिड़ा समय है से बिताते न कने अपना जिड़ा समय तिना कन्ने बिताते न कने अपने जिड़ा रिश्ते न तिना दी जिड़ा अहमियत है से जरूर समझते न, चाहे से अहां दे माता पिता न, चाहे से अहां दे बाकी कोई रिश्ता है, तिना दी अहमियत अहां जो हमेशा बचपन ते ही समझ या अहां दे पेरेंट्स जिड़े से सिखाते न किस प्रकार बड़े छोटे दी रिस्पेक्ट करनी है, भी यहाँ जो परिवार ते ही सीखने जो मिलता है। तो हर चीज़ यहाँ जो सीखने जो मिलती है पर अहाँ किस प्रकार इन्हां चीज़ां जो समझते न, इन्हां चीज़ां दा जेड़ा महत्व है से अहाँ लैंदे न, अहाँ दे जेड़ा पहले श्रोता अहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं न कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते
0: जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: बढ़िया जी बढ़िया। बरखा हो रही है ना?
0: जी बरखा हो रही है। तो चैतड़ी वाले साइड होई है पहले कणका ते कि नहीं होए हल्ली?
1: होई हो
0: जी। अच्छा होई हो ता अच्छी गल है जी। होई हो ता
1: जी।
0: ता मंगल जी आज जहां जेड़ा गलबात करा देन से करा देन कि अहां दे जीवन च रिश्तियां दी कितनी अहमियत है। जी तो तुहें क्या लगता आज कने दौर दी अगर अहां गल करिए तो कुथी ना कुथी ये चीज अहां जो बिल्कुल कम दिखने जो मिला दी
1: आजकल बंदे वाले टाइम नहीं है रिश्तेदार जाने।
0: जी समय नहीं है ना जी, हर कोई हर किसी दी जुबान ते ही सुनने जो मिला था कि समय ही नहीं है।
1: हां जी, कुछ खेल चली भी है ये, कुछ खेल रिश्तेदार में लगी था मोबाइल।
0: जी तो फिर मोबाइल
1: ने दिखा ले जी।
0: जी ये तो तुह सही पॉइंट जड़े से किता कि अगर अहां कुसी ने जान दी न या कुसी कन्ने गल बात कर दे न तो बिना जो पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ करने बैठे हो ना, यहाँ दा कौन रिश्तेदार है, सिर्फ बिना जो
1: हाँ जी
0: मोबाइल फोन दा पता है कि नहीं, मोबाइल
1: हाँ जी
0: फोन
1: हाँ जी
0: जड़े से चलाना है ना जी।
1: हाँ
0: अगर अहाँ गल कर दे ना, ताई प्यार भावना एक दूसरे अंदर बनती है ना जी, बिना
1: जी
0: बिना गल कीते तो कुछ पता नहीं चलता ना जी कि अगला जिहड़ा व्यक्ति है उसका व्यवहार किस प्रकार है ना जी।
1: अजकल रहा नहीं था प्यार भाव
0: जी बिल्कुल ही खत्म है ना जी।
1: नहीं जी।
0: जी तो है क्या लगता, क्या कारण है इदा कि ये चीज हाँ जो बड़ी कम दिखने जो मिलना दी।
1: जिस साथ बना पहला हाउस साथ बना आया है ताऊ ताऊ ही भी जाना कुछ बना गा में जब में से कोई पता ही नहीं आया
0: जी, मतलब यही है कि क्या बोल दे, जेड़ा पहले भी यहाँ गाल करिए था उस प्यार भावना जिड़े से दिखने जो ज्यादा मिलती
1: क्यों
0: थी जी।
1: नहीं
0: जी ता
1: हेलो
0: आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करगी जी।
1: मान राज हुई है
0: जी कहो।
1: पहला गाना था हमने मेरा सुनाया एक जरा भी थोड़ा दिया समझा
0: जी कोई नहीं, आज पूरी फरमाइश तो हाँ तक पहुंचा दें जी, समय दी थोड़ी दी रहता है ना जी, समय दा भी।
1: जी तो हाँ जी बता हाँ तो और उठ पटांग सुन दे नहीं सिद्धि अपने माता दे
0: जी जरूर, आज कुंदे गीत सुनना पसंद करके तो हाँ जी।
1: सही गाना पूरा होना चाहिए था जी
0: जी गाने दे बोल एक बारी ते रिपीट करते हैं जी।
1: गाने ने बोले ये कि ना मेरी मैया जो नथड़ी कड़ा जी मैं सुने आ रहा हूँ
0: मेरी मैया जो नथड़ी घड़ाई देवे सुने आ रहा ना जी।
1: हाँ जी ये गाना पूरा होना चाहिए था जी अजय नीता फिर मैं
0: जी जी जरूर जरूर जी, तो हुंदा फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी, जुड़ने
1: हाँ
0: वास्ते बड़ा
1: जी
0: बड़ा धन्यवाद जी तो हुंदा
1: धन्यवाद जी थोड़ा भी
0: जी। ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने, तो चल देना फरमाइश दी और सुन देने सा प्यारी दिया फरमाइश आ जो तुहा सारे भी जरूर इंजॉय करा कन्ने, नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दो ते तीन बजे तक तो फिर ते अहां थोड़ा दिया जानकारियां दी ओर बढ़ते न, क्योंकि जानकारियां पहुंचाना भी तुहां तक जरूरी है, कने गीत संगीत फरमाइशां भी तुहां तक पहुंचाना जरूरी है। तो शो तो पहले भी मैं गलबात जिहड़े से कीती थी कि जिहड़ा किसाना दे चेहरे पर स्माइल जिहड़े से जरूर फीकी जिहड़े से हो ही है। बारिश की वजह ने जिहड़ा किसान हन तिना दी उम्मीदा पर पानी जिहड़ा से जरूर फिरी है, क्योंकि अप्रैल दे महीने च ठंड भी बढ़ी गई है, कने मौसम दे जिहड़ा मिजाज हन से पूरी तरह बदली चुके हो, कने जिन्हां हां जो एहसास हो दे कि जनवरी आई ठंड जिहड़ा से जरूर महसूस जिहड़ा से हो दी है, कने फिर ते स्वेटर कने जैकेट हां जो पहनाई थी हुए। पर आज कने मौसम दी गल करिए तां प्यागा दा मौसम तां बिल्कुल साफ था, प्यारी दी धूप जिहड़ा से खिली हुई थी, पर उन्हें दी मौसम दी यहाँ गल करिए तां थोड़ा देया मौसम फिर ते ठंडा जिहड़ा से होई आ, कने किसानां वास्ते फिर ते जिहड़ा चेहरे पर रौनक आला जिहड़ा माहौल है से फिर ते गायब जिहड़ा से होई है, कने तिना दी जिहड़ा गेहूं दी फसल है से भी कुछ ना कुछ नुकसान जिहड़ा से मौसम करा दा है, कने अपनी करवट जिहड़ा से जरूर बदला दा है। कने सब्जियां दी यहाँ गल करन, किसाना जिहड़ा सब्जियां लगाईयां जिहड़ा बीज लगाए न सभी इस बरखा दी वजह ने जिहड़े से गली सड़ी गए न, कने पिछे दी अहां दी जिहड़ा खनियारे ते रीना जी हैं तिना कन्ने भी गलबात होती थी तो सभी यही बोला दे थे कि अहां जिहड़ा कुछ बीज लगाए हो न तो सनैट दी वजह ने खराब हुई है न, तो कुछ ना कुछ अहां जो जिहड़ा नुकसान है से मौसम दी और भी मौसम दी वजह ने भी अहां जो झेलना पौद है। पर सही है ना कि अहां मौसम दे अखे कुछ नहीं बोली सकते, मौसम दा कोई भरोसा नहीं है, कालू मौसम अपना जिहड़ा बदलाव है या अपने जिहड़ा मिजाज है से बदला दे, तो इंसान दी अहां गल करिए तो इंसान भी इसी प्रकार अपने जिहड़ा रंग रूप है से जरूर बदलता है, अपने जिहड़ा मिजाज है से जरूर बदलता है, तो उसी प्रकार मौसम भी अपनी करवट जिहड़े से बदला दा, तो प्यार भावना जिहड़े से एक दूसरे अंदर नहीं है। रिश्तियां दी अहां गल जिहड़े से आज चलाई हो फिर ते अहां अपनी गलबात उपर वापिस जिहड़े से जरूर आंदे न। संस्कार दी अहां गल कीती तो संस्कार जिहड़े से अहां जो अपनी संस्कृति कन्ने जोड़ी करी रखदे न, या अहां जो हमेशा ये सिखाते न कि परिवार च रहना कने बड़िया का मान सम्मान करना तिना का आदर सत्कार करना कितना जरूरी है। शिक्षा अहां वास्ते सबसे ज़्यादा जरूरी है, पर ये संस्कार भी अहां जो समाज से जिहड़ा तौर तरीके न तिना कन्ने चलने जो सिखाता है। दोस्ती का महत्व कुछ ना कुछ ये चीज़ भी अहां जो कम दिखने जो मिला दी, क्योंकि हर कोई अपना जिहड़ा फायदा है से दिखा दा। दोस्ती दा महत्व जिहड़ा है से अहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करदा है। दोस्ती दी एक खास गल भी है कि अहां दोस्ती दा जिहड़ा चुनाव है ना से अहां खुद ही कर देन, खुद ही अहां दोस्त जिहड़ा है से बनांदे न, कने अहां उस दोस्ती दा महत्व भी अपने जीवन च समझदे न। अगर अच्छे दोस्त हन है अहां दा हमेशा साथ दिन देना, चाहे सुख है चाहे दुख है हमेशा अहां दे कंधे ने कंधा मिलाई करी चलते न, कुछ यादा तिना कन्ने भी अहां संजोई करी रखते न, तिना कन्ने भी अपनी जिहड़ा यादा न चाहे से स्कूल टाइम दी है चाहे से कॉलेज टाइम दी है चाहे बाकी गल अहां करन, तां हर समय दे अनुसार चलना भी जरूरी होंदा। पर दोस्ती भी अहां दे जीवन च बड़ी अहम भूमिका अदा करती है, कने अगर अहां जो टेंशन है या तनाव है अहां अपनी जिहड़ा गल्लां ने से अपने दोस्त कन्ने शेयर करी सकदे या अपने माता पिता कन्ने भी शेयर जिहड़े से करी सकदे, करना तो बनता है, क्योंकि आज के दौर दी अहां गल करिए तो कुछ ना कुछ अहां अपना ज़्यादा समय जिहड़ा से हमेशा मोबाइल फोन च लगा देन, हेडफोन जिहड़ा से अहां दे करना चाहन अहां जो अगे पीछे कोई पता नहीं है चाहे से कुछ भी है चाहे अहां बस च ट्रैवल करा देन चाहे कुछ भी करा देन। तो श्रोताओं थोड़ा दिया इसी उपर नज़र दौड़ाने की भी अहां जो जरूरत है, कने अहां थोड़ा दिया फिर ते अगे बढ़ना है, कने तुहां जो अगली जिहड़ा फरमाइश है तिहा दी ओर लेकर चलना है। सुनदे इस प्यारे दे भजन जो प्यारी दे फरमाइश जो

राधा कश्यप जी की फरमाइश जेगी तहां तिना तक पहुंचा देन कने से रहने वाले न कांगड़े ते। तो तुह सारी भी इस भजन जो इंजॉय करा। भजन दे बोल तो हां जरूर सुनी ले न कने इस भजन जो गाया वे काजल जी ने। तो हां भी इस गीत जो इस भजन जो जरूर इंजॉय

आंबुला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारी इस वक्त कार्यक्रम सुना दिन आपने रेडियो दो शशि कने ये सफर तो हाँ तक रहता है 2 से 3 बजे तक। समय दी ओर अगर हाँ अपना जीड़ा ध्यान है से लगान दिन तो 2:37 कार्यक्रम च हुई न कने फिरे ते अहाँ तो हाँ दा जीड़ा स्वागत है से कर देना कने तो हाँ सारे इस कार्यक्रम कने जरूर जुड़े होने न कने अगर नहीं जुड़े न तो जल्दी जल्दी जुड़िया अपना रेडियो सेट ऑन करा या मोबाइल फोन सुना देना तो मोबाइल फोन सुना कने कॉल भी जड़ा तो हाँ जरूर करी सकते। कॉल करने वास्ते यहाँ बार बार जड़ा स्टूडियो का नंबर है से तुहाँ तक पहुँचा देना कने तो हाँ सारे भी इस नंबर जो नोट कर देना नंबर नोट करके ताई तो हाँ क्या ताई तो तुहां कॉल करी सकते ताई तो तुहां टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर लिखने जो तैयार है ना मिंजो तो लगा था कि तुहां बिल्कुल पेन कॉपी पकड़ी ले आना है क्योंकि इतना टाइम तो बोलते हो ही तो फिर ते नंबर जड़ा है से तुहां लिखा कने मैं तुहां तक नंबर पहुँचा दी है तुहां पेन कने कॉपी जरूर पकड़ी ले आना है। नंबर है 701-811-7091 फिर ये नंबर तुहां तक पहुँचाना है 701-811-7091 ये नंबर तुहां तक पहुँचाए तो है कने बाकी काम तुहंदा है। फिर ते अहां अपनी जिहड़ा गलबात है से तुहां तक ले करी आउंदे न गलबात अहां दी चली होए कि रिश्तियां दी अहमियत अहां दी जिंदगी च कितनी ज़्यादा है पर अजकने दौर की अहाँ गल करिए कुथी ना कुथी ये चीज़ अहाँ जो बिल्कुल ही कम दिखने जो मिला दी दिखने जो क्या मिला दी एहसास दी हर किसी दी जुबान पर यही है कि अहाँ समय ही नहीं है। है तो बिल्कुल सही गल कि अहाँ अपनी जिंदगी जड़े से क्या बनाई ली हो याद आया कुछ भाग दौड़ भरी हर कोई यही बोला था कि अहाँ की जड़ा जिंदगी है से थोड़ी देर भाग दौड़ भरी है कने अहाँ जड़ा अपना ज़्यादा समय है से अपने जो बिल्कुल ही नहीं दे पा दे बदलता लाइफ स्टाइल जड़ा से अहाँ का कुछ ना कुछ अहाँ जो दिखने जो मिला था ज़्यादातर अहाँ का जड़ा बदलता लाइफ स्टाइल क्या है मोबाइल फोन सोशल मीडिया रील्स अपलोड जड़े से अहाँ करते रह दे अहाँ दे आस पास जड़े से कोई भी बैठे अहाँ जो पता ही नहीं है कि से अहाँ जो क्या बोला दे चाहे फैमिली की गल करिए चाहे कोई भी है तो थोड़ा देर समय तो देना बनता है ना से कुदा काम है से तुहदा ही तो काम है अगर तुहां समय देंगे ताई तो तुहां अपने कन्ने गलबात करी पाएंगे या अपनी फैमिली कन्ने गलबात करी पाएंगे अगर तुहां जो तनाव है तो तनाव तो दूर की ना निकलना तुहां ताई के जालू अपने कन्ने गलबात कर देन तिना कन्ने अपनी जड़ा गल है से शेयर कर देन ताई अगर तुहां खुद ही सोच विचार करते रहते न हमेशा एक ही गल्ला जो पकड़े बैठी रहते न तो से गल तुहां जो कुथी ना कुथी परेशान तो करती है ना तुहांदे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव जड़ा है से जरूर पाती है तो काम तुहांदा है कन्ने थोड़ा देर समय देना तुहांदा है। सोशल मीडिया दी अहाँ बार बार जिहड़ा गल है से करते न सोशल मीडिया पर अहाँ अपना ज़्यादा समय लगाते न चाहे से इंस्टाग्राम है चाहे से फेसबुक है दिखावे वाली दुनिया अहाँ जो ज़्यादा पसंद लगती है रियल वाली जिंदगी जो अहाँ कुथी ना कुथी भूली चलो या अपने जो समय देना ही बिल्कुल अहाँ भूली हो अगर अहाँ समय है भी तो अहाँ अपना ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर जड़ा है से ज़रूर लगा देन अपनी रियल जिंदगी जो भी अहाँ इंस्टाग्राम फेसबुक पर जड़ा है से शो करा दे श्रोताओं थोड़ा दिया फैमिली जो भी समय देन थोड़ा दिया प्यार भावना जड़ा है से ज़रूर एक दूसरे अंदर रखन हूँ अहाँ का काम भी यह है कि थोड़ा दे अगे बढ़ना है कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचानी है क्योंकि तुहां जो भी इंतजार रहिंदे कि फरमाइशां दा जिहड़ा दौर है इस समय अनुसार पूरा होवे समय अनुसार अहां भी जिहड़ा तुहांदियां प्यारियां प्यारियां फरमाइशां ने से तुहां तक पहुँचांदे न कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़दे न चलदे न सुनदे न अगली फरमाइश तुहां सारे भी
ज़रूर इस प्यारी दी फरमाइशा जो इंजॉय करा।

माटी दी मेह कार्यक्रम तो हाँ सारे ही सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कहने फिर यहाँ वापिस आइयो ने इस गीत के बाद कने तो हाँ सारे गीत इंजॉय कीता कने इस गीत की फरमाई शाहजो आइयो वे नरवाणा ते कने तिना दा ना वे पूजा जी कने जेड़ा तिना दियाँ सखियाँ सहेलियाँ न तिना दा ना भी जरूर तो हाँ तक पहुँचाना है वंदना जी मुस्कान जी तिना तक अहाँ ये गीत पहुँचाया कने तो हाँ सारिया भी इंजॉय कीता तशो तो गल आँदी चली हो कि रिश्तियां दी अहमियत कुथी ना कुथी ये चीज़ अहाँ जो फिक्की दिखने जो मिला दी है अहाँ ल अगर अहाँ गल करन धैर्य दी कमी तो हर कुसी च है कि अगर अहाँ पुराने समय दी गल करिए अहाँ कोई भी चाहे से फैमिली है चाहे कोई भी रिश्ता है उसकी वैल्यू जड़ा है से जरूर समझते थे पर आज के दौर की अहाँ गल करिए ये चीज़ अहाँ च धैर्य जड़ा है से लफ्ज बोलने वास्ते तो छोटा दे है पर कुछ ना कुछ ये दिखने जो नहीं मिलता है अहाँ जड़ा से धैर्य जड़ा से हमेशा बनाई करी नहीं रखते न अगर कोई अहाँ जो थोड़ा देर भी कुछ बोली दे तो अहाँ हमेशा गुस्सा करना जड़ा से शुरू करी दे तो गुस्सा एक हद तक ही अच्छा लगता है अगर लिमिट तो ज़्यादा हो जाता है तो इससे कुछ ही ना कुछ यहाँ जो नुकसान जड़ा है इसे ज़रूर देख रही जाता है चाहे फैमिली की गल है चाहे रिश्तों की गल है क्योंकि रिश्तों च प्यार भावना होना बड़ी ज़्यादा जरूरी है रिश्ते जड़ा ना से अहाँ दे नाजुक होंगे मिट्टी का मटका तो हाँ हमेशा दिखते न या मिट्टी का जोड़ा मटका है मैं बार बार ये जड़ा मिट्टी के मटके की गल जड़ा से करती है कि मिट्टी के मटके जो बनाने वास्ते बड़ा ज़्यादा टाइम लगता बड़ी ज़्यादा मेहनत भी अहाँ बोली सकते कि लगती मेहनत लगती मेहनत जड़ा से लगाई करी मिट्टी का जड़ा मटका है से मिट्टी कन्ने बनी करी जड़ा से तैयार होंदा है फिर यहाँ उस मिट्टी के मटके जो बड़ा अच्छा है मिट्टी के मटके का पानी की अहाँ गल करिए कुछ ना कुछ इसका जड़ा टेस्ट है अहाँ जो सुकून जड़ा से जरूर दिंदा है पर सही अगर मिट्टी का मटका अगर अहाँ के हाथ से छुट्टी आंदा है या अहाँ ते गिरी आंदा है तो उस जो टुटने जो कितना टाइम लगता सोचा ला जरा कि तुह सारी जरूर तुह सोचा दे होनी ने कि उस जो टुटने वास्ते तो एक मिनट या एक सेकंड बिल्कुल ही नहीं लगती तो इसी प्रकार फैमिली दी या रिश्ते दी गल अहाँ करा देन तो प्यार भावना हमेशा रखा क्योंकि जिंदगी का नाम है हमेशा प्यार भावना करना गुस्सा जड़े से हमेशा गुस्सा करने ने कोई भी चीज़ जड़े से अच्छी नहीं लगती गुस्सा तो पल भर वास्ते होंदा पर नुकसान अहाँ जो पूरी यानी कि यही बोली सकते कि हमेशा वास्ते देख रही जाता तो सोच विचार करना बनता है तुह सोचा कने अहाँ फिर ते अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना क्योंकि गीत संगीत चालू गलबात कने फिर ते जुड़ी आंदा है तो कार्यक्रम का जोड़ा माहौल ऐसे थोड़ा जहा चेंज हो जाता है कने तो सारे भी जरूर इंतजार करा दे होने ने कि अगली जोड़ा फरमाइश है से यहाँ तक कालू दी या पुजती है तो सारे भी इस कार्यक्रम च लाइव जड़ा से यहाँ कने जुड़ सकते ता जुड़ने वास्ते फ्री ते नंबर मैं तुह तक बार बार पहुँचा दी है तो सारे भी इस कार्यक्रम के सफर च जुड़िया कने अपनी जोड़ा गलबात है से जरूर करा कने फरमाइशा भी इस कार्यक्रम च तुह सुनी सकते नंबर है 701-811-7091 नंबर तुहां तक दिता है पहुँचाई कने बाकी काम तुहां दा चलदे न सुनदे न अगली फरमाइश तुहां तक पहुँचांदे न

ते श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश गीत जेड़े जरूर तो सारे जो पसंद आया होना कने तुहां ध्यान ने भी सुनिया होना है। तो श्रोताओं हर चीज़ अहां वास्ते जरूरी है, हर चीज़ अहां जो चाहिदी, पर कुथी ना कुथी प्यार भावना जेड़े से बिल्कुल कम है। उस जो भी तो कायम रखा ना, हर चीज़ अहां दे कदमा तक पहुंची आंदी है, पर रिश्तियां दी जेड़ा अहमियत है से कुथी ना कुथी फीकी जेड़े से पी आंदी है। वह जो फीकी मत पा, क्योंकि स्याहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदा है। चाहे कोई भी रिश्ता है, अगर अहां रिश्तियां जो अहमियत दिंदे न ताई अहां अपनी जिंदगी जो अगे बढ़ाई पांदे न, ताई अहां अपनी जिंदगी च सफल होई पांदे न। बच्चें जो हर संस्कार माता पिता दिंदे न, हर चीज़ तिना तक पहुँचाते हैं, अच्छे संस्कार तिना जो दिंदे न, पर हर चीज़ दी जेड़ा कदर है इस तिना जो भी सिखा, किस प्रकार माता पिता तिना वास्ते मेहनत करा देन, किस प्रकार तिना दिया ख्वाहिशा जो पूरा करा देन। तशो तो थोड़ा दिया और अगर बढ़ना है, क्योंकि समय जेड़ा है सियाहाल बड़ा ही ज़्यादा कम है, तो चल देना थोड़ा दिया क्या बढ़ देना कने सुन देना अगली फरमाइश।

आर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो तो शशि कन्ने। इस कार्यक्रम दा जिहड़ा सफर था तुह तक था से 2-3 बजे तक। दस में जिहड़ा से यहाँ जो बार बार बोला था कि उन तुह इस कार्यक्रम ते अनुमति जिहड़ा से ले लिया कन्ने यहाँ दा भी बार बार ध्यान जिहड़ा से समय दी ओर जा दे समय के अनुसार हूँ हाँ कार्यक्रम ते अनुमति भी लैनी है कने तुहां हमेशा अपना जेड़ा ख्याल है से रखा कने अपने दा भी ख्याल रखा कने थोड़ा देया समय जेड़े से अपने वास्ते भी जरूर निकाला ता श्रोताओं हमेशा खुश रहा कने हंसते रहा कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनांदे रहा कने अपनी रेडियो दो शशि जुदिया अनु

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इससे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने की महफिल सजी है रेडियो गुंजन धर्मशाला से फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और ये रहा कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

ऊंचाइयों से जंप लैंग्वेज अचीवमेंट्स इंटरनेशनल एक्सचेंज वर्ल्ड रेडी टेबल टेनिस जिमनास्टिक क्रिकेट हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट जेई सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग एकेडमिक एक्सीलेंस स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918170191। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इससे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून को रो रहा हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुझो कार्यक्रम लेकर इंदी अपनी गप्पा। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है जी सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा। क्या हाल चाल न तो है तुंदे सभी रे, उम्मीद भी है और आशा भी करनो कि सभी रे हाल चाल किया सो बिल्कुल ठीक बुन और तो सब किया सो खरे बुन और सतर्क भून। सतर्क भून ये जो हुक्का नशा, ये जो चिट्टा, ये जो भंग आजकल वे युवा करू कर देन। आऊँ दूर गाने वे गल ना करना चाहता हूँ, अपने ही इलाके री गल करना चाहता, अपने ही धर्मशाला री अक्षेत्र री किया सो आऊँ गल करना चाहता हाँ। केंद्र धर्मशाला मंच भी किया, ये चिट्टा अपने पैर पिसारी चुक रहा हा, ये भंग, ये चर्स, अफीम, गांजा और ये मोटे मोटे स्तर पर किया सो भुच्चू करता हा। जो कि नौजवानों पता क्या है कर लेता है, सूझ फोन मिलाई देना और इन हो गए कि असुविधा संपर्क और ये तेना नौस्ताई एक्स वाई जड, जो समझदार इंसान है सो समझ गो बुना कि क्या बोलना चाहता। सो तुसु अगर सेफ रहना और अपने बच्चे जो रहने वाली पीढ़ी जो सेफ रखना तब मोटे रहा ये फर्ज बने गंदा वह इस समय तो है अपने इस फर्जा जो कि सो सब समझा। तो है मत सोचा कि आऊँ फलाने वाला तक है बुना रहा छड मौके लेना देना। अगर ये मानसिकता होगी तो है चल देन और इस मानसिकता होगी किया सो तो है रहना लग देन समाज में, तो समाज सच में किया सो बिगड़े गंदा हर्ष होता हूँ। सो समाज में तो है इस चीज़ जो किया सो समझा, इस चीज़ जो किया सो परखा कि जड़ी भी तुसु हुसदा कोई भी हुक्का नशा करदा खास कर ये भंग और चिट्टा ये ज़्यादा इंदे धर्मशाला में फैली चुकरा तुंदा तो है तस्वीर तुरंत किया सो अपने हिसाब होगे भी सेरी सेटिंग करा और नज़दीकी पुलिस या वीडियो आजकल तो बड़ा सिंपल दे माध्यम है यार, वीडियो फोन चुका और वीडियो बनाई दे है ना। और ये मत सोचा कि ये बोलना हाई कोर्ट आसूल है सुप्रीम कोर्ट आसूल है, मतलब हर फैसला है कहना सो सटीक, बेशक देरी होगी बंदा लेकिन सटीक किया सो उत्तर इंदा। सो तुंदा सभी तुस सभी जो ये बोलना चाहता हा कि तो है सब इन चीज़ जो बड़ा अवेयर रहा तुसु कड़ी भी लगता कि तुंदे आस पड़ोस में, तुंदे आस पड़ोस में अगर का होटल न तड़िए बच्चू करता हा या तुंदे घर बार ही करी बच्चू करता या करखी बलड़ अंदर ही करी बच्चू करता तो तड़ी तुंदा तो है अपने आस पड़ोस चौकी है सो सतर्क रखा। सतर्क रखने वास्ते श्रोताओं ये बोल सकता कि तू है सतर्क रहा, सतर्क किए बोल सकते कि इस तरीके भी तुसो कोई भी घटना के सो हुस दिया तो तिन्हों तुरंत किया सो जरूर वीडियो बना या पुलिस रे हवाले किया सो इन्हें नशेड़ी जो जरूर करा। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो गए तुसु लाइव होना हाँ 5 बजे तक 7088879 पर नंबर आक मौके फिर हूँ तू के शेयर करनो आ साझा करनो आ 7088879 पर तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं, अपने क्षेत्र में जानकारी साझा कर सकते हैं। तो बहरहाल आइए जी आगाज कर लेंदन है कार्यक्रम रहा इस गीता सो गया और वे तत्थों बाद तुंदी सभी फरमाइश अगेन सो पूरी कर ले।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 শামলা 2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো এসে বিয়ে টিউন কর রোর কার্যক্রম সচিন কাপুর সো কি বিলকুল লাইভ হুন কর দেন আপনে আপনে রেডিও সেট মা তো বহুত বহুত স্বাগত আর হার্দিক অভিনন্দন সবি হুনে আলেরা সবি শ্রোতাগণ রাখ মুকে ফেরি কার্যক্রম মঞ্চ তা চলি সো তো জল দেন আর এ সময় তো সো দশনা চান 13 ডিগ্রি সেলসিয়াস কিয়া সো ধর্মশালা রা तापमान तो ऐसा सोचूँ कचो कि बेगा बरखा पो ऐसा तो मौसम थोड़ा करे ठंडा किया सो रहे हो धर्मशाला मंच और दिन ऐसे समय किया सो मौसम फिर एक मुख्य मौसम करवट बदली थी लेकिन इस समय की गल करूँ सो तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है और न मेरी गल करूँ तो नमी 60% रह गया सो आस पास हाँ इस समय तो इस कार्यक्रम में तो सब जुड़ी सकते हैं चौथा 708-8-8-7-0-9 पर तो ये चलते ना और चौथा आज बड़ा खास उत्सव खास दिन है आज है राष्ट्रीय नर्स दिवस नेशनल नर्सिस डे है आज जी बिल्कुल श्रोतो हर साल की सो 6 मई जो मनंदन है राष्ट्रीय नर्स दिवस और ए दिन स्वास्थ्य सेवा में नर्स वे निस्वार्थ योगदान और तैयारी कड़ी मेहनत जो किया सो सम्मानित करने वास्ते किया आज का दिन यह समर्पित कर दें जी बिल्कुल बगैर नर्स है बगैर सिस्टर किया सो कुछ भी संभव नहीं है श्रोतो 6 मई जो शुरुआत भोई अटेरे 6 मई जो राष्ट्रीय नर्स दिवस रेसो की राष्ट्रीय नर्स सप्ताह नेशनल नर्सिस वीक भी शुरुआत भी बंदे आशतो ये सप्ताह हर साल 6 मई थो शुरू बुझ करे 12 मई तक किया सो चलता है इतिहास की गल जरूर कर ले महत्व है सब बखूबी जानते हैं सो जरूर तुस हो गया है दस ले। लेकिन आइए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं और कार्यक्रम में प्यार दे गीताओं गीतू सभी रूबरू करवाते हैं शतों

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा चल रही हैं। तो ये श्रोतो इंदे श्रोतागण आस हो गए कनेक्टेड हैं नवे आप उस दिन कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन। नमस्ते जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार।
1: और ठीक ठाक है ना?
0: बढ़िया जी बढ़िया। तो भला तो ठीक ठाक राजीव बाजी।
1: हाँ जी।
0: और
1: पहचानो भी तो कौन बोल कर देना
0: पूछना जी मुआ वे कौन बल्लू देन और कड़ी तो बल्लू देन
1: थात्री हो
0: थात्रियों बल्लू देन। अच्छा थात्रियों क्या
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: क्या ना जी तुंदा?
1: मेरा ज्ञान चंद जी।
0: अच्छा ज्ञान चंद जी।
1: हाँ जी
0: ज्ञान चंद जी आज ना लोगो दैड़ू दूड़ू
1: बस दैड़ू लागे चली आए ना।
0: अच्छा तो 5 बजे पहले चली इन दिन तो है।
1: हाँ जी आ रहे तो शिवा का खानी टाइम बाद नहीं हुए था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ जी।
0: चलिए जी कुंडने गीत होना पसंद कर ले
1: और आई दिया जंगला डलियारा।
0: अच्छा जंगला डलियारा।
1: हाँ जी हाँ जी। अच्छा अमरे के सोचू है नहीं
0: तो दसा कि दे तुंदी पास है ड्राउन दे दसो
1: रोज ही बरखा दे दा ही भी बरखा थी।
0: अच्छा
1: आते
0: 9-10 तरीक तक अबे फेरे बल्लू कर देन किया
1: कई बंद 19 तरीक का बरखा ना।
0: अबे क्या बोले सकते ना सटीक जानकारी की ऐसा होता तो उसको बता रेडियो तो ही मोल दिया।
1: हाँ जी हाँ जी सो
0: ना अल्ले तकरता सुले जानकारी की भैया 8-9 तरीक का तक का मौसम खराब था तो बाद
1: पूरी जाचर तो है।
0: तबे इस टाइम तो बड़ा मुश्किल है किसान नवास थे मतलब कणका तैयारी हरी गानी ना।
1: हाँ ये कणका सब वाली बढ़ने है प्योरी
0: इडी यारी क्या मुझे लगता है ऑलमोस्ट धर्मशाला क्षेत्र रही सब भी रही बढ़ने है प्योरी बुनी
1: सब बढ़ने है ना लेकर
0: है ना।
1: हाँ जी हाँ जी देखो बोल रहे हाँ जी।
0: चलिए ठीक है जी तुझे एक गीत जरूर होना ले है।
1: ठीक है जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून करूँ देन और करो बुना और अपना पसंदीदा गीत उड़ने वास्ते इस नंबर मंच कॉल जरूर कर सकते हैं। और सोगी सोगी जो श्रोतो आज स्पेशल डे है तस बारे में किया सो है सोगी सोगी जाने लेंदे हैं। आज जी के मैं दसूँ कि राष्ट्रीय नर्स दिवस आज श्रोतो राष्ट्रीय नर्स दिवस आज नेशनल नर्सिस डे है। आज नर्सर सम्मान माँ के विशेष दिन री मांग 1950 दशक माँ की आसो शुरू हुई थी। श्रोतों 1950 गल करूँ करता है 10 दशक माँ के आ सो नर्स वास्ते अक सम्मान व दिन की सो मंगे गो थो। आधिकारिक तौर पर 1982 माँ अमेरिकी कांग्रेस से किया सो 6 मई जो राष्ट्रीय नर्स मान्यता दिवस रे रूप में किया सो नमित करूँ। और राष्ट्रीय रोनाल्ड राष्ट्रपति रोनाल्ड की शतो सो इस पर किया सो हस्ताक्षर करी देता है। ये दिन नर्स रे प्रति आभार व्यक्त करने रा अवसर है जो अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्र में किया सो मरीजा री देखभाल वास्ते किया सो फ्रंट पर काम कर दी हैं श्रोताओं। हाँ जी बिल्कुल। और इसी सो की तो बंडरन में एफएम बैंड 91.2 MHz पर वीडियो हुणु कर देन। आइए जी जंगला ढल फरमाइश पूरा कर देना और अगर तो हुणु कर देन टेढ़ी गुंजन तो अगर तुंदे भी घरे अंदर या फिर तुम आस पड़ोस कोई नर्स आता तो असो की संपर्क करी करी तिया की सब बधाई दें इस प्लेटफॉर्म करी करी।

0: शोतो एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही हैं। ये कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हागो बड़न शोतो है और बल्दे कांगड़ा जिला में किया सो लापता भोई आवे गैस सिलेंडर और मन उके सो दूर दूर तक भटकू कर देन और भटकने हो किया ना सो मजबूर हैं। बराले पूरी गलत सो की जरूर शेयर कर ले है लेकिन आइए इन श्रोतागण सो की कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। कौन बल्लू देन और कड़ी था बल्लू देन
1: बल्लू कौन दी ना
0: जी
1: नागरा बाजी मुझे नागा खोल कुंडी में
0: नागा खोल कुंडिया खनेरे थों क्या ना जी तुंदा
1: सरला सरला
0: जी
1: देवी सरला
0: सरला देवी जी
1: अंजी
0: सरला देवी जी ता क्या चांदे ने इस समय तो है नाग देवता भगवान थों
1: ए बरखा दूर कर दिया है जरा दुख पागान
0: अच्छा
1: मन रिकॉर्ड सारे बड़े नहीं थे उदी
0: हाँ जी
1: ता बड़ा मुश्किल
0: मुश्किल दौर बुझे को आना जी
1: हाँ
0: क्या
1: जी
0: चक्कर ला सरला देवी जी अंबर असु तू न को सुना उंदा लच्छा जहने बरखा ना चेंदी ते हने ठुकी करे बरखा दी चुंदा जहने बरखा चेंदी बुंदी ते हने बरखा ना बुच्चू कर दी ने
1: हाँ यही तो कोपा
0: एक सेरा गोपा इंदा गोपा की दने देव तेरा गोप लाए
1: ए दान देव तेरा उला रा कुछ कुदरत तो कह रहा
0: अच्छा
1: क्या
0: चलिए
1: पता कैसा मौसम है।
0: जी जी जी जी
1: हाँ जी कोटी का दिलवाई थी बैली
0: जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है जी। नागा खोल गुंडिया गीत उसे जरूर होना ले है।
1: हाँ जी धन्यवाद
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: श्रोताओं तो सब इस समय बन रहे हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला से होगी और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा हूँ कर देन पर हाल चल देन और अगले श्रोता हो गए कनेक्ट कर देन तुसु। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी। नमस्ते सचिन जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। ठीक ठाक ना।
1: ठीक ठाक बच्चे थे बल्ला
0: बढ़िया जी बढ़िया। अगर आऊँ गलत नहीं है ता इंदे बन्नी माता आली अम्मा के ऐसा बोलन देन।
1: शाबाश पहचान लिया
0: हाँ जी
1: खरे ना
0: बढ़िया बढ़िया जी। तो बल्ले तो ठीक ना।
1: खरे बच्चे खरे हम तो तक दूर घूमने आया।
0: अच्छा अच्छा क्या बात है करे कुछ रे दी है।
1: तेरा वो इस चंबा
0: अच्छा
1: लाख क्या माता कुआरसी
0: क्या बात है क्या बात है। कितने दिन दिन हरा टूर तो जी
1: छठे दाड़े आते हैं बच्चे
0: चौथे दाड़े।
1: छठे
0: अच्छा
1: छठे
0: छठे दाड़े।
1: छठे दाड़े
0: अच्छा अच्छा सुले दो तो अम्मा नहीं दे आक तू है और आक बागनी आली अम्मा। अब बागनी आली अम्मा बड़े दिन बुए फोन ना करो तिंगे।
1: मेरी माता का अरे बुआ ना मिलो कढ़ाई अंदर सपना है दस इंडिया है भी
0: अच्छा
1: बड़े
0: अच्छा
1: काम में घूमी आए ना
0: क्या बात है। तक दे लगो अमा घूमी करे क्या फील बुआ क्या क्या हेरू तो है क्या क्या हुनो बार।
1: तो बच्चे हुए तो खारा लगू ना आवे तो बढ़िया चल हाँ बढ़िया
0: अच्छा
1: चल रहा है दस दस बारह बारह रोज पैदल चले जाते ही है रस्तना राती पाते ही है
0: और पहले तो पैदल गंदे थी है ना जी
1: पैदल गम दे बच्चे चल रहा है जो मरारा जो गम दे है ना
0: हाँ जी
1: इन ग्राम पी चल जो है ना मरारा पी चल जो कुआरसी
0: हाँ जी
1: त्रीय चौथे रोज जा कुआरसी बोल दे ही है।
0: अच्छा
1: अच्छा चम्मा भी चाहे गोरू लाई कर गाने गाय नीन दांत नीन है तो आस आस बैड लाई गाम देखिए चम्मा भी चाहे हाँ पर ताले बुरे गाते बंदी है तो अब तो सुख देना
0: अबे सुख देना।
1: हाँ जी
0: तमें जो लगता ताए मनु रे शरीर सरार भी शरीर के अंसो खरे बंदे थी है ना ताकत
1: तो
0: बंदे
1: खरी
0: थी।
1: बच्चे चौस्त की ये काने
0: हाँ जी चुस्त थी ये काने।
1: मान सात वर्ष की बार चुक के लाना ना
0: हाँ जी
1: ब्याह चल पाना
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: ग्यारह बारह बजे ग्यारह बजे जानी तुम भी बहुत डेरा पाजी धड़ी खाना।

0: जाना, दोए कर दो पो रेस्ट करने है, तो फिर त्राए की वजह फिर चल जाना।
1: अच्छा
0: फिर समझे पंछी है वजह फिर डेरा पा जीना।
1: हाँ जी
0: शरीर
1: अच्छा पदना माता कहने दें हुक्म अली ने गजूर
0: जी
1: क्या पता वे तसा नगरी कहने पूजना सु।
0: चलो ठीक है चे पूजी गाना भगवान राज खुश रख माता राड़ वीर पूजा जिंदी है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल ता अम्मा जी कुंदने गीत होना तो सु
0: गीत तो सब देखा रे लग ने बच्चे सुना दिया कोई भगवान दा भजन।
1: अच्छा भगवान रा भजन होना।
0: हाँ
1: बिल्कुल भरमौर गीच करे आए तो है भोले शंकर जी नगरी आए तब गुणगान का त्यारा बुना ही है ना जी। चलिए ठीक है ठीक है जी अम्मा जी ध्यान रखा अपना तो है।
0: चलो बड़ी मेहरबानी है तुम दी बड़ा धन्यवाद
1: जी अम्मा जी धन्यवाद।
0: ठीक
1: है शोतो एफएम बैंड 91.2 दोई मेगा हर्ट्स पर वीडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी टी उनको ड्रॉ कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देना अपने अपने वीडियो सेट में आइए जी इन दगले श्रोता सोगी बड़ी कुछूरे। नमस्ते
2: हेलो
1: जी। हेलो
2: नमस्ते सचिन जी।
1: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक ना।
2: ठीक ठाक जी ठीक ठाक वो उसमें करूंगा ना तंग और तो ठीक है ना।
1: हाँ चलिया है बेटा तंग कर देना।
2: हाँ अलग कर दे आधार लग गुंडा हो रहा भी।
1: अच्छा जी
2: हाँ
1: कौन बल्लूंदन और कड़ी था बल्लूंदन जी
2: पंचायत का ना कौन बल्लू कंधे। आज मोन दी है आपका ड्रेस।
1: अच्छा
2: सचिन जी।
1: हाँ जी हाँ जी
2: आज मोन दी
1: है
2: आपका ड्रेस।
1: कंडियों बल्लूंदन कंडियों बिछाने को। हाँ जी
2: मौसम जी
1: जी जी जी
2: ए भजन होना आसा तेरे मंदरा जो आए बन्नी माता मेहर करे।
1: आसा तेरे मंदरा जो आए बन्नी माता मेहर करे है ना जी।
2: हाँ जरूर करे ला ला ही दिन देरी नहीं कोई भी
1: देरी कोई नहीं कमाल तो है बल्ला से
2: बन्नी माता बन्नी वाली माता बन अम्मा बल्लू गंदे ना।
1: हाँ जी हाँ जी
2: हाँ लाई दे भजन
1: ठीक है जी अम्मा तो घूमी आई
2: ना अच्छा तेरे मंदरा जो आए बन्नी माता मेहर करे ठीक है ओके
1: ओके जी। चलिए हे वीडियो गुंजन धर्मशाला तो ऐसा भी ट्यून कर रो और हे इस प्लेटफॉर्म रे खासियत है इस रेडियो रे खासियत है कि अह मानू के ना ये आप इंदा इंदा जो इंदी बोले या जो अह मानून गद्दी मानून या कि दुवे सपोर्ट कर दे हिन शो और अकी दुवे रा सहारा के आसो बन दे हिन लेकिन ये न पुराने मानो जो कि दुवे सहारा कर देना अकी दुवे सपोर्ट कर देना है ना। फॉर एग्जाम्पल तो है रो आप जो लेकिन आजकल रे जो यू था सो कर का नगर का अलग दिशा में किया सो चल रहा सो ने इरदा कि भाई ये इन दे अपने न इन हो गया है विस्ता बनाई करी रखना इन हो गया है विस्ता निभान है ना। आजकल रे जो जनरेशन सो ये चीज़ा ना हीरू कर दिया रिश्ते बिगाड़ू कर दिया रिश्ते बर्बाद किया सो करू कर दिया। बहरहाल पहले नागा खोल कुंडिया गीत सुन लेंदे और तत्थों बाद यारी फरमाइश पूरी कर ले।

শত এফএম ব্যান্ডে কি আনুই দিশাম লাবে দই মেগা হার্টস পর রেডি গুঞ্জন ধরমশালা তো হ্যাঁ সব ইউন গুর আর কার্যক্রমে হিন্দি আপনি গপ্পা গেনে সো চল রেন তা বহুত বহুত স্বাগত হার্দিক অভিনন্দন হ্যাঁ সবই হুনে আলেরা সবই শ্রোতা গণরা তা আইয়ে শ্রোতা কার্যক্রম যো আগু বড়ন্দ আর কার্যক্রম মঞ্চ কে সো तू सब भी जी तू सब भी हो थोड़ा कर रूबरू करवाइंदे धर्मशाला में आईपीएल मैच अगर तू सु हेरना हा तो जेब थोड़े और ढिले की ऐसो करना पैने हाँ तू सब भी उतरना चाहता शो तो दत्ते धर्मशाला की ऐसो पंजाब किंग्स इलेवन की ऐसो पुजने हाँ और हाँ तीन या पूछेगा ना जी तो कजियो कतियो ढिले करना पैने इस बार की सो 1200-1500 रे बजाय किया 2500 यानी कि 2500 रुपये भी सब तो सस्ती टिकट हाँ जी बिल्कुल फ्रेंचाइजी है बिक्री जो उपलब्ध करवा हुआ 22000 तक भी टिकट है ना सो मुड़ू कर दी है ना अक्साल में ही दाम में किया सो दुगनी बढ़ोतरी करया और करखा नगर का जो क्रिकेट प्रेमी है ना जो बेचारे प्रेमीन सो था प्रेमीन सो काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं जो कि जड़ी 1200 था 1500 रे टिकट मुड़े गंदी थी चढ़ी चलो जो महीने वह 10-12 हज़ार रुपया जो महीने रकम आंदा सो थोड़ा करी मतलब अगर बड़ा ही क्रिकेट प्रेमी है तो थोड़ा करी हिम्मत रखी लेंदा कि चलो यार इस महीने उ करना कर ला तो कर ला कि भाई 1200 री टिकट खरीद ले ला तो उ करना कर ला 1500 री टिकट खरीद ले ला एक थोड़ा जनरल प्राइस है लेकिन मुझे ना लगता कि मिडिल क्लास बंदा गया सो 2500 रुपया गया सो खर्च दिया बस मानना 2500 खर्च नो तो 500 रुपये के 3000 कर का किस्त ना दिनो है तो अब ये जो फ्रेंचाइजी वाले मैच रहे कि छुरे ने ये सिर्फ और सिर्फ ये लगू करता कि सिर्फ उसे मोटे मनु वास्ते कि न सो रही कुछ रहे हैं जो मातड़ भाई न सो इस मैच जो कि असो ना हेरी सकते ना कजो कि 2500 रुपये का खर्च ना है ना तो धर्मशाला में भूने वाले आईपीएल मैच में टिकट रे दाम के ने सो दुगने बुझ गया ना अधिक बढ़ोतरी रे अधिक बढ़ोतरी की ऐसो भोए और क्रिकेट प्रेमी जो बड़ा झटका के ऐसो लगो पिछले वर्ष ही मई में आईपीएल मैच में 1200-1500-1800-2000 री बजाय अबे सब तो सस्ते टिकट की ऐसो 2500 रे पहले 1200 री मुड़े गंदी थे 1500 री मुड़े गंदी थे अबे की ऐसो सब भी सस्ते टिकट 2500 रुपये रे किया सो मिलना शुरू हुआ इस तो बाद टिकट रे दाम के ना सो 22500 रुपये तक किया सो ही नेड़ी टिकट दाम एकदम ही किया सो 1500 तो त्राई तो 4000 रुपये के सो बढ़ोतरी करी दीती है इतना ही नहीं ऑफलाइन टिकट काउंटर जो काउंटर में लेकर भी किया जो एच पी काउंटर में के मोड़ू कर दी सो एच पी सी एरी और तो कोई प्रयास ना हुआ है सो तो अक्की वर्ष में किया सो दामों में दुगनी बढ़ोतरी किया सो करी देती है और जो क्रिकेट प्रेमी नींद है सो पूरी तरीके होगी मायूस नज़र इच्छु करते हैं धर्मशाला में भूने वाले त्राई आईपीएल मैच में किया सो पंजाब किंग्स व दिल्ली कैपिटल्स 11 मई जो किया जो मैच वास्ते टिकट आ गया सो ऑनलाइन बिक्री शुरू हो चुकी है तो चलिए जी थोड़ा करी कोस्टली के इन सो बच गया अभी चल देन और हिंदी माता जो हिंदी सियाने अम्मा बन्नी फतेहपुर वाली अम्मा किया ता और इसी सो गया कोर श्रोता थी है इन द कंडी थो तो यारी फरमाइश में हूं ऐसा बन्नी माता रहे

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধারমশালা তো এসে বি টিউন গুড রো আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা গিয়া সো চল রি হিন্দা শত ভাবে কার্যক্রম থ কি এসো ইজাজত লেনে রা সময় বিলকুল বচে গো হা আর তুসু সবই জো বস এ বলনা চাহো কি तो हंस दे रहा तो मुस्कुरा दे रहा और तो है खिल खिल खिल दे रहा माता पिता री सेवा की ऐसा जरूर करा और हमेशा गल बोलो बार बार बोलो कि इन सुख के नशे थों की ऐसा जरूर दूर रहा सो तो है ना और जो ये सुख के नशे तो सु कर दे हुस देव ने तिन्हों की ऐसो जरूर कड़ी थों कड़ी की ऐसो सजा भी दिया और तिन्हों सबक किया सो भी दया सोतों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचे गंदा है ना और अगर तो एकजुट बोल रहे सोतों ताएं कि ये सुखा नशा ऐसा धरती थों ये धर्मशाला री धरती थों किया सो की जी सकता है ना तक बुना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहरहाल सचिन कपूर कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो है बिल्कुल लाइव हूँ कर दिन अपने अपने रेडियो सेट में गंदे गंदे बसे बलना चाहूँ इन्वायरमेंट जो खरा रखा पर्यावरण जो कि सुखा रखा हंस पुष्ट और तंदुरुस्त रखा और हंसते रहे मुस्कुरा रहे इन शब्द था सचिन कपूर।

तू ले ले नो इजाजत और हुणन दिन तू सब गंदे गंदे प्यार दिया गीत तुंदे सबीरे रेडियो सेट मा नमस्ते धर्मशाला।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: करना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: हाँ?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

कि अभी सूरज डूबा नहीं है, ज़रा सी शाम तो होने दो। कि अभी सूरज डूबा नहीं है, ज़रा सी शाम तो होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ कार्यक्रम लेके गुड इवनिंग धर्मशाला। बहुत बहुत स्वागत है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोताओं का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ, होप सो, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। बड़ा मायने रखते हैं श्रोताओं, खुश रहना और तंदुरुस्त रहना, है ना जी। तो सबसे पहले तो धर्मशाला के मौसम की बात करते हैं। देखिए, ये धर्मशाला का मौसम है भाई साहब। कहते हैं घोड़े की लात और धर्मशाला की बरसात कभी भी जो है वो पड़ सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल है। अब दिन के समय देखिए 12:30 बजे के बाद किस तरह का मौसम जो है वो बना हुआ था, एकदम सही, है ना। आई थिंक 12 बजे के आसपास जो है वो मौसम एकदम से ख़राब हो गया था। हल्की बारिश जो है वो बिल्कुल माइनर सी बारिश जो है वो भी हुई, और कोई पता थोड़ी नहीं। अभी देखिए धूप निकली हुई है, ये धूप को देखते ही हुए ही तो मुझे ये शायरी याद आई कि अभी सूरज डूबा नहीं है। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने वीडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। तो इस समय की बात करें हम तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है अभी तक, इसके आसपास जो है वो रहेगा तापमान श्रोताओं। उसी के साथ ह्यूमिडिटी को कहें, यानी कि ह्यूमिडिटी अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी और हिंदी में नमी की बात करें तो 40% के आसपास जो है वो नमी भी है श्रोताओं। आप सभी सचिन कपूर के साथ बने हुए हैं FM बैंड 91.2 MHz पर। आइए जी, गीतों का पिटारा जो है वो हम बिल्कुल खोलेंगे और आपको सुनाएंगे। तो आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ और फिर आपको सुनाएंगे। इसी तरह बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आपके अपने वेड़ी गुंजन

शो तो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में गुड इवनिंग धर्मशाला आज सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अब चलते हैं आज के विचार की ओर। कहते हैं रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से चलते हैं, इसलिए व्यवहार जो है वो अच्छा रखो। जी बिल्कुल, अच्छी संगत में रहना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं, और अच्छा व्यवहार करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि रिश्ते जो है वो शब्दों से नहीं चलते। शब्द तो आप अभी चार अच्छे बोल लीजिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद या थोड़े साल बाद जो है वो चार बुरे बोल दीजिए, तो फिर क्या। व्यवहार जो है वो बहुत मायने रखता है कि आप व्यक्ति कैसे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है शब्दों। सो व्यवहार जो है वो अच्छा रखना चाहिए। रिश्तों में शब्दों की भी बहुत वैल्यू होती है, बड़ी अहमियत रहती है, बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो रहता है रिश्तों में शब्दों का भी। तो शब्दों का चयन जो है वो भी बड़ा नाप तोल कर जो है श्रोताओं वो करना चाहिए। और अक्सर व्यवहार अगर आपका अच्छा है तो फिर सभी रिश्ते जो हैं वो अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। आइए श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बने हुए हैं वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ, और पिटारे यूं ही खुलते रहेंगे, गीत संगीत का पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा, और बिल्कुल बिल्कुल जानकारी का पिटारा भी यूं ही खुलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। गीत के बोल हैं यही होता प्यार।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, यही होता है प्यार क्या। जी बिल्कुल, नमस्ते लंदन मूवी से लिया गया ये प्यारा सा गीत, और हिमेश जी और सुनिधि जी की आवाज़ में हमने ये प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट पर सुना। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका अपना नाचीज सचिन कपूर हूँ, और जानकारियों का पिटारा अब खोलते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। कांगड़ा ज़िला में जो है वो लापता हुए हैं गैस सिलेंडर शतों लोग, दर दर भटक रहे हैं और भटकने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, इंडियन गैस की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले 2 महीनों से लगातार मिडल ईस्ट संकट के बीच में जो है वो कमर्शियल संघ घरेलू इंडियन गैस की सप्लाई पूरी तरह से जो है वो दम तोड़ गई है। हालांकि भारत के लिए हालात सामान्य होने की स्थिति के बावजूद भी सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा व मुख्यालय में इंडियन गैस की सप्लाई अब बॉलीवुड फिल्म जैसी हो गई है, उसकी तर्ज पर जो है वो हो गई है। सिलेंडर मानो गायब से हो गए हैं, लापता से हो गए हैं, जिसे ढूंढने के लिए जो है वो हर दिन हज़ारों लोग जो हैं वो सड़कों पर, गलियों पर, चौराहे पर, नुक्कड़ पर जो हैं वो एजेंसी के स्टोर के चक्कर भी इवन की लोग जो हैं वो काट रहे हैं और निकले हुए हैं घरों से, और स्टोर के चक्कर भी जो है वो काटने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके भी जो है श्रोताओं में बताना चाहता हूँ, इतना करने के बावजूद भी जो है वो निराशा ही हाथ लग रही है। इतना ही नहीं, हज़ारों रुपए का किराया खर्च करके शाहपुर गेरा के करेरी गांव में 35-35 किलोमीटर दूर धर्मशाला में सिलेंडर लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, जबकि 80 वर्षीय बुज़ुर्ग को भी जो है वो लाइन में लगना पड़ रहा है श्रोताओं, और वो बुज़ुर्ग जो है वो मजबूर हैं इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, आप खुद सोचिए कि अगर सही रूट से और सही तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर गड़बड़ तो होगा ही होगा ना, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन गैस एजेंसी कोतवाली बाज़ार व शीला चौक की ओर से निर्धारित रूटों पर वाहन भेजने की बजाय चीलगाड़ी रोड में क्षतिग्रस्त सड़क के पास गैस की सप्लाई देना आरंभ कर दी। उचित तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना होने से जो है वो सिस्टम जो है वो अव्यवस्थ हो गया है, और अव्यवस्था का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है श्रोताओं, जिससे सुबह 8 या 9 बजे से जो लाइनों में, कतारों में लोग खड़े हैं श्रोताओं, उन्हें दोपहर 2 बजे के बाद भी जो है वो सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई दिनों से गैस सिलेंडर की बुकिंग के बावजूद डिलीवरी नहीं हो रही है, और काफ़ी बेहद, मतलब सोचिए आप कि अभी तो कुछ है भी नहीं, फिर भी इतनी जो गैस सप्लाई है, गैस सप्लाई की गाड़ी का इंतज़ार जो है वो हो रहा है, और रूट पर जो है वो चल भी नहीं रही हैं। जिस तरह से निर्धारित रूट पर पहले गाड़ियां चलती थी, इस समय इंडियन गैस एजेंसी जो है वो उस तरह से नहीं चल पा रही है। इवन कि इस पर स्थानीय लोगों ने भी जो है वो अपनी राय रखी है, अपनी बातें जो हैं वो कही हैं। धर्मशाला कंडी के जो तिलक हैं, उन्होंने बताया कि गैस की सप्लाई सुचारू ना होने से 2 महीने से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। एजेंसी जो है वो लगातार परेशान कर रही है। भागसुनाग के विनोद कुमार ने बताया है कि 1.5 महीने से सप्लाई नहीं पहुंच रही है, जबकि कई कमर्शियल स्थानों पर घरेलू सिलेंडर दिख रहे हैं। सुधेड़ के 80 वर्षीय बुज़ुर्ग दयाराम का कहना है कि 1.5-2 महीने से सिलेंडर की सप्लाई नहीं मिल पाई है। आज वह खुद सिलेंडर लेने के लिए पहुंचे, जिसमें भी 2 घंटे से अधिक का समय जो है वो उन्हें लगा। श्यामनगर के हमारे तनुज हंस का कहना है कि गैस सिलेंडर के लिए 2 महीने से परेशान रहना पड़ रहा है मुझे।
प्रशासन की ओर से रूट चार्ट पर सप्लाई भेजने की बात कही तो जा रही है, जबकि कोतवाली इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम में भी दर्जन चक्कर लगाने पर क्षतिग्रस्त सड़क के किनारे सिलेंडर प्रदान करने का खेल खेला जा रहा है, जिसमें लोगों को रोजगार को छोड़कर लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। अब उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। तो ये है इंडियन गैस एजेंसी की आज तक की नई कहानी, जिसमें स्थानीय लोगों का भी कुछ ना कुछ कहना है। ये तो वो स्थानीय लोग हैं जो हम तक पहुंचे हैं, ऐसे न जाने कितने ही स्थानीय लोग हैं श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। अब श्रोतो वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का और अंतराल के बाद आप सभी को मिलते हैं वापस।

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। आइए तो कार्यक्रम को अब श्रोताओं थोड़ा सा और आगे हम ज़रूर बढ़ाएंगे, अन्य जानकारियां जो हैं वो आप तक हम ज़रूर साझा करेंगे, आपको बताएंगे श्रोताओं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इस जानकारी की ओर। तो श्रोतों, क्या आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विमान के अंदर जो है वो धमाका हुआ और 5 यात्री जो हैं वो घायल हुए। जी बिल्कुल, आप सही सुन पा रहे हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं श्रोतों। गोवा से चंडीगढ़ जो आ रही फ्लाइट थी श्रोतों, इंडिगो ये फ्लाइट का नाम था, और इसमें लैंडिंग के दौरान जो है वो एक बड़ा हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान श्रोतों फ्लाइट में मोबाइल पावर बैंक फट गया। जी एक बार फिर से चीज़ को मैं रिपीट करना चाहूँगा कि मोबाइल पावर बैंक जो है वो फट गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो इस हादसे में 5 लोगों के घायल होने की संभावना है, जानकारी मिली है। हालांकि संभावना है कि और भी अन्य जो है वो घायल हुए होंगे और संख्या जो है वो अभी बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में 39F सीट पर बैठे दिव्यांश नाम के शख्स के पावर बैंक में लैंडिंग के दौरान अचानक आग लग गई। उसने इसकी जानकारी क्रू मेंबर्स को दी। इतनी देर में पावर बैंक फट गया श्रोतों। विमान दोपहर में 3:32 पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और 3:35 पर जो है वो फ्लाइट में मोबाइल पावर बैंक जो है वो फट गया, यानी कि 3 मिनट बाद ही जो है वो पावर बैंक फटा श्रोतों। तो इस तरह की जानकारियाँ जो है वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे श्रोतों। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ, जानकारियों का पिटारा, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडियो, जो कि

सचिन कपूर, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आप सभी ने, ना तुम जानो और ना ही हम। कहो ना प्यार है मूवी से लिया गया ये गीत है श्रोताओं, और लकी अली ने ये गीत जो है वो गुनगुनाया है। चलिए चलते हैं और अगली जानकारी की ओर आपको सभी को लेकर चलते हैं। श्रोताओं, चुनाव ने रोकी डायलिसिस वाले मरीजों की सांसें। जी बिल्कुल, आप सही जानकारी सुन पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर विभाग के साथ साथ चुनाव आयोग के आदेश जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं श्रोताओं। दोनों विभाग डिपार्टमेंट्स की, दोनों विभागों की बेरुखी और संवेदनहीनता जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे डायलिसिस करवाने वाले मरीजों पर भारी पड़ रही हैं। दोनों विभागों ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो कई डायलिसिस करवाने वाले मरीजों का जीवन जो है वो गंभीर संकट में आ जाएगा। वो गंभीरता से जूझ रहा है श्रोताओं, और ये जल्द से जल्द जो है वो फैसला होना चाहिए। कई अस्पताल प्रबंधकों के अनुसार अस्पतालों के MOU 30 अप्रैल को समाप्त हो गए हैं, जबकि इसके नवीनीकरण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज शिमला स्थित संबंधित निर्देशालय में जमा करवा दिए गए थे। इसके बावजूद अब तक ना तो MOU का नवीनीकरण किया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार के आधिकारिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अस्पतालों का यह भी आरोप है कि पुराने बकाए भुगतान को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कराने के लिए जो है वो स्वास्थ्य अधिकारियों का रुख भी नकारात्मक हो गया है। अस्पतालों ने बताया कि इस संबंध में निर्देशालय को कई बार जो है वो पत्र और ईमेल भेजे गए हैं, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है। MOU नवीनीकरण में देरी का सबसे बड़ा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है जो हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। अस्पतालों के अनुसार सैकड़ों डायलिसिस मरीज ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी नियमित उपचार पर निर्भर है। आर्थिक तंगी के चलते कई मरीज अब अपना डायलिसिस टालने को मजबूर हो गए हैं श्रोताओं। कुछ मरीज घरों में बैठकर इस उम्मीद में हैं कि सरकार जल्द MOU साइन करेगी और उन्हें योजनाओं के तहत मुफ्त इलाज जो है वो मिल सकेगा। चिकित्सा विशेषज्ञ के अनुसार डायलिसिस में देरी या अंतराल मरीजों के लिए जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है और उनकी स्थिति तेज़ी से बिगड़ सकती है। अस्पताल प्रबंधकों का आरोप है कि ये सामान्य प्रशासनिक देरी नहीं बल्कि दो विभागों की जो है वो संवेदनहीनता है। इन दोनों को शायद ऐसी गंभीर मरीजों की पीड़ा का अंदाज़ा नहीं है। जानकारियों का पिटारा आप सभी यूं ही सुनते रहेंगे, यूं ही चलता रहेगा आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। देखिए, मुसाफिर जो है वो हर कोई होता है श्रोताओं, मैं भी मुसाफिर हूँ, आप भी मुसाफिर हो। इस धरती में हम सभी मुसाफिर ही हैं, इस ज़िंदगी में हम सभी मुसाफिर ही हैं, है ना। देखिए, हमें थकना नहीं है, हमें चलते जाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी, जो कि सचिन कपूर। फिर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जितने भी श्रोता हमारे साथ, लाखों श्रोता इवन की जुड़े हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए जी, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो इसी तरह चलता रहेगा, जानकारियों का सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। सो तो इसी के साथ अगर हम आईपीएल की बात करें, अब तो जहां जो टिकट्स 1200 1500 हज़ार या 1800 की मिलती थी, और मे बी जो 1000-1200 की टिकट मिलती थी वो कहा जाता था कि सबसे सस्ती टिकट जो है वो है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि अब इस आईपीएल में, इन मैचों में, ये जो 3 मैच धर्मशाला के बहुत ही प्यारे से क्रिकेट स्टेडियम, इवन की दुनिया का बहुत ही खूबसूरत ये क्रिकेट स्टेडियम है, अब यहाँ पर सबसे सस्ती टिकट जो है वो 2500 रुपये की है। जी बिल्कुल, यानी कि एक सामान्य वर्ग का इंसान जो है वो शायद अब कहीं ना कहीं हिचकिचाएगा 2500 रुपया खर्च करने में। जी बिल्कुल, अगर आप महीने का 10 से 15 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मैच देखना है, मुझे आईपीएल धर्मशाला में देखना है, और 2500 रुपया आप खर्च कर सकते हैं, नहीं, आप 10 बार सोचेंगे कि नहीं, 1500 फिर भी इंसान जो है वो खर्च कर देता है, लेकिन 2500 मुझे लगता है एक सामान्य वर्ग के लिए, हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसी तर्ज पर अब अगली जानकारी, और उसके बाद हमारे हम ज़रूर लेंगे अगली जानकारी के साथ। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चिट्टा जो है वो जगह जगह अपने पाँव पिसार चुका है। इवन कि हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश तो गली गली में भी जो है वो, हिमाचल की गलियों में भी अब चिट्टा मिल रहा है। लेकिन मैं धर्मशाला की यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि धर्मशाला में भी जो है वो चिट्टा, भंग, अफीम, चर्स, गांजा जो है वो बिक रहा है। जी बिल्कुल, कहते हैं हर देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो युवा होती है, और युवा आपका अगर इस तरह के धंधे में पड़ा है, युवा आपका अगर इस प्रकार की संगति में पड़ा है, तो वो युवा बिल्कुल अपने देश को, अपने परिवार को जो है वो नष्ट करने की कगार पर खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको कहीं भी इस तरह के कोई भी नौजवान मिलते हैं जो इस तरह का धंधा करते हैं, आप उनकी वीडियो बनाइए, आप पुलिस स्टेशन में उनकी रिपोर्ट कीजिए, या फिर आप संबंधित डिपार्टमेंट से जो है, कंसर्न पर्सन से जाकर जो है वो ज़रूर मिलिए, एसपी अशोक रतन से जाकर जो है वो आप ज़रूर मिलिए। श्रोताओं, ये नशा इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, धर्मशाला की गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, चौराहे पर, नुक्कड़ पर जो है वो अपने पांव पिसार चुका है, और हमारा धर्मशाला का युवा जो है वो इसी नशे में जो है वो डूब रहा है, और ओछी हरकतें जो है वो कर रहा है। सो आप सभी जितने भी बुद्धिजीवी मुझे इस समय सुन रहे हैं, उन सभी से मैं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं, अगर आपको इस तरह से कोई भी युवा मिलता है तो उसे आप पकड़िए, और सलाखों के पीछे जो है वो ज़रूर डालिए, और ये चेन तभी जो है वो टूटेगी, है ना। आप सभी को कदम जो है वो उठाना होगा, और एक साथ कदम जो है वो उठाना होगा, तभी ये चेन टूटेगी। चलिए तो चलते हैं, और मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं। हर किसी को इश्क होता है हर किसी के साथ, कहते हैं ना कि लाखों आसमान है सितारे में, माफ़ करें, लाखों आसमान है सितारों में, चांद में, लेकिन आसमान के बिना चांद की पहचान जो है वह अधूरी रहती है। श्रोताओं, वैसे तो बहुत से लोग हैं इस महफिल में, इस दुनिया में, लेकिन आपके बिना, आप सभी श्रोताओं के बिना इस वेड़े गुंजन की शान जो है वो अधूरी रहती है, वो अधूरी रहती है। तो चलिए, मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं अमित एमी भाई, उनकी फरमाइश भी थी जो कि उन्होंने मुझे एक दिन पहले बताई थी श्रोताओं।
क्योंकि हमारी लिस्ट, हम आपको बताते हैं कि गाने जो हैं वो हमारे एक एक दो दिन पहले ही फाइनलाइज हो जाते हैं और लिस्ट प्रॉपर बनती है, एक क्यू शीट बनती है, उसके हिसाब से हम गाने जो हैं वो चलाते हैं। तो चलिए जी एमी जी, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे हम आपके अपने वीडियो सेट पर, रेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं सचिन कपूर हूँ। मैं तेरे इश्क में मरना चाहूँ कहीं, ये वाकई में ये इश्क बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही लाजवाब होता है, बड़ा ही सुरीला होता है, मीठा होता है और लाजवाब होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिसने इश्क किया शब्द नहीं है जनाब इश्क के बारे में बोलने के लिए मेरे पास। हाँ जी बिल्कुल, इश्क को भला कोई कैसे डिफाइन कर सकता है, प्यार को भला कोई कैसे डिफाइन कर सकता है ना। मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं है, ये तो सिर्फ दिल से रूह से जो है वो होता है। बहरहाल शाम के 7 बज चुके हैं श्रोताओं, और अब वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में समाचारों का।
1: इस्तीफा देना पड़ेगा। आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमा वलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी टीवी के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसी के डीएमके के साथ गठबंधन में है इस पार्टी के 2 विधायक हैं। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
2: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और हाउंग ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के लोगों के साथ खड़े रहने के लिए भारत वियतनाम का आभारी है। नई दिल्ली में आज हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तो लाम ने व्यापक चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाएंगे। भारतीय औषधि उद्योग में हुई प्रगति का उल्लेख करते हुए दोनों पक्षों ने वर्ष 2027 से वियतनाम के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की खरीद में भारतीय कंपनियों की संभावित भागीदारी के तरीकों को तलाशने पर सहमति व्यक्त की। सरकार ने बताया है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहाँ आपूर्ति में कमी की कोई खबर नहीं मिली है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
3: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथॉस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक समर्पित कार्यबल का गठन किया है। सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आरचे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। आई श्रोताओं, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में अंतराल के बाद एक छोटे से गीत का।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंचन धर्मशाला, और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी के अपने वीडियो सेट पर। तो आइए कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खोलते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। श्रोतो, नगर निगम चुनाव कांग्रेस ने जो है वो हर वार्ड में उतारे अपने बड़े चेहरे। धर्मशाला के हर वार्ड में जो है वो बड़े चेहरे उतरे हैं। कांग्रेस ने जीत के लिए बिछाई विसात, 7 मई से मिशन मोड पर उतरेंगे नेता। जमीनी स्तर पर तेज होगी हलचल। धर्मशाला नगर निगम चुनाव 2026 के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी चुनावी विसात बिछा दी है। संगठन को मजबूती देने और जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कांग्रेस प्रदेश महासचिव संगठन विनोद जी ने नगर निगम चुनाव कमेटी की घोषणा की है। इसी सूची में पार्टी ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों, विधायकों और अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य के कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को अपनी को कमेटी का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है श्रोताओं, जबकि विधायक रघुवीर सिंह बाली को इस पूरे अभियान का इंचार्ज बनाया गया है। चुनाव की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने वार्ड स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अपनाई है। कमेटी ने 17 वार्ड को अलग अलग समूह में बांटकर हर क्षेत्र के लिए एक प्रभावशाली वार्ड इंचार्ज नियुक्त किया है श्रोताओं। इसमें मुख्य रूप से डिप्टी चीफ केवल सिंह पठानिया को वार्ड 1, 6 और 14 की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विधायक मलिंदर राजन वार्ड 2, 3 और 5 का मोर्चा संभालेंगे। इसी तरह वार्ड 4 और 7 के लिए अजय महाजन पूर्व विधायक और मल्होत्रा एमसी कॉरपोरेशन वार्ड 8 के लिए जो है वो संजय चौहान चेयरमैन, वार्ड 9 के लिए नविंदर चेयरमैन, वार्ड 10 और 11 के लिए विधायक किशोरी लाल, वार्ड 12 के लिए कुलदीप पठानिया चेयरमैन, वार्ड 13 और 15 के लिए अजय वर्मा उपाध्यक्ष, वार्ड 16 के लिए मनोज चेयरमैन, वार्ड 17 के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा अध्यक्ष, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को जिम्मा जो है वो सौंपा है श्रोताओं। जी बिल्कुल, 7 मई से मिशन जो है वो बिल्कुल मोड पर होगा, और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी नियुक्त पदाधिकारी और इंचार्ज 7 मई से अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर कार्यभार संभाल लें। महासचिव विनोद ने पत्र के माध्यम से सभी नेताओं से सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदारी की अपील की है। पार्टी का मानना है कि इन अनुभवी चेहरों की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और धर्मशाला में कांग्रेस एक बार फिर अपनी ताकत साबित करने में सफल होगी। जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता जाएगा श्रोताओं, जिस तरह से खुल रहा है। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।
1: लिख

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। आइए श्रोताओं, खेल समाचारों की ओर चलते हैं। और आज हैदराबाद में हार की हैट्रिक से बचने के लिए जो है वो हल्ला बोलेगी पंजाब किंग्स। कुछ ही देर में जो है वो पहली बॉल डल जाएगी श्रोताओं, 7:30 में जो है वो पहली बॉल डल जाएगी, और देखते हैं किस प्रकार से जो है वो मैच खेला जाता है, किस प्रकार से जो है वो कौन सी टीम जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करती है, कौन सी टीम जो है वो बेहतरीन खेलती है। देखिए, जो टीम बेहतरीन खेलेगी जाहिर सी बात है कि वही टीम जो है वो जीतेगी, और वही टीम जो है वो जीत की एक और सीढ़ी जो है वो चढ़ेगी। जी बिल्कुल, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पंजाब किंग्स इलेवन पंजाब जो है वो पंजाब किंग्स इलेवन जो है वो बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दे रही थी पिछले कुछ मैचों में, लेकिन फ़िलहाल कहीं ना कहीं वो एक असमंजस सी ज़रूर है मन में कि कौन आज इस मुकाबले को जो है वो जीतेगा और जीत कर अपनी झोली में डालेगा। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा श्रोताओं, वो एक और जीत की पौड़ी जो है, एक और जीत की सीढ़ी जो है वो चढ़ेगा। जी बिल्कुल, आइए आप सभी को एक बहुत ही अच्छा मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि चुनावी बेला है, पंचायती चुनाव चले हुए हैं, लेकिन आप सभी अपने रिश्तों को जो है वो ख़राब ना करें चुनाव के चक्कर में, है ना जी। आप किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, आप आज़ाद उम्मीदवार भी हैं या किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन अपने संबंध, अपने रिश्ते जो हैं, अपने नज़दीकी रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप सभी श्रोता। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर, पिटारे गीत संगीत।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम इस समय चल रहा है गुड इवनिंग धर्मशाला। बिल्कुल बने हुए हैं आप सभी। आइए तो अब वक्त हो गया है श्रोतो वेडी गुंजन धर्मशाला में एक छोटे से अंतराल का मिलते हैं।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170181701। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

शो तो FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने जो है वो ट्यून किया है और कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, एक बार फिर से पूरा बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है एक छोटे से गीत का और गीत के बाद फिर आपको सुनाएंगे हम प्रादेशिक समाचार। जी बिल्कुल, आइए सुनाते हैं पहले आप सभी को ये प्यारा संगीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: शुद्ध एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन आप सभी ने ट्यून किया है। 7:45 हो गए हैं और अब वक्त हो गया है रेडी गुंजन धर्मशाला में प्रादेशिक समाचारों का।
1: निभाने का किया आह्वान, प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए कल 7 मई से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3 दिन 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी। मंडी नगर निगम के बहना वार्ड में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए वापस, फिलहाल चुनाव प्रक्रिया टली। लाहौल स्पीति की मालंग पंचायत में सभी सदस्य निर्विरोध चयनित। और प्रदेश भाजपा का आरोप, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा व निराशा का प्रमाण। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। राज्यपाल आज मंडी स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का उनका आदर्श आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता के समय था। कविंद्र गुप्ता ने छात्रों से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने, नशा मुक्त जीवन अपनाने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोने का आग्रह भी किया। इस बीच राज्यपाल ने हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के वार्षिक समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इस दौरान राज्यपाल ने महाविद्यालय की आधुनिक नई डेंटल वैन सेवा का शुभारंभ भी किया। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए कल 7 मई से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन 8 और 11 मई को भी भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 12 मई को होगी जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव होगा। इन चुनावों में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिनमें 25,67,770 पुरुष हैं जबकि 25,11,249 महिलाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 52,349 युवा पहली बार वोट डालेंगे। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3 दिन 26, 28 और 30 मई को राज्य में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन तिथियों को सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान व पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित क्षेत्रों में स्थित दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दैनिक व वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी ये अवकाश सवैतनिक होगा। इसके अलावा उन कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है जो राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं और उनके पास पंचायती राज संस्थाओं में मतदान का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को CBSE पाठ्यक्रम के तहत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि तय मानकों के मुताबिक 100 शिक्षण संस्थानों में अभी भी विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर है और ऐसे शिक्षण संस्थानों को बंद करने पर सरकार विचार करेगी। शिक्षा मंत्री ने 12वीं कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के बच्चों के बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई।
2: तो हमने कोई 30-35 स्कूल जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट वो प्राइमरी मिडिल स्कूल बंद किए हैं। बाकी अभी जो हमने मानक शुरू में बनाए थे 2023 के आसपास जो मानक बने थे लेसन 5 वाले, उसके बारे में विभाग ने जो फाइल है वो मुख्यमंत्री के पास भेजी है, तो शीघ्र उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और इसमें भी लगभग कोई 100 के आसपास स्कूल ऐसे स्कूल और आते हैं जिनको एक तरह से डाउनग्रेड या मर्ज किया जाएगा विद इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर।
1: रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हो रही बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों व बागवानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बारिश व ओलावृष्टि से सेब की फसल को ही शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40% नुकसान हो चुका है। रोहित ठाकुर ने कहा कि मौसम में आए इस बदलाव से सेब ही नहीं बल्कि अन्य फलों व फसलों को भी नुकसान हुआ है।
2: वर्षा हो रही है, काफी अनसीजनल रेनफॉल हुई है और निश्चित रूप का इसका नुकसान हमारी कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफी हुई है। चाहे हम ओलावृष्टि की बात करें, इस वर्ष ओवरऑल रिपोर्ट आ रही है वो मात्र कुछ हाई क्षेत्र में संतोषजनक ड्रॉप है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ये ओलावृष्टि की जद आ रही है, इसका काफी नुकसान कृषि और बागवानी क्षेत्र का हो रहा है। अन्य जो हमारी फसलें होती है उसकी भी क्षति हो रही है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 4 नगर निगमों धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन सहित 47 शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन था। मंडी नगर निगम के बहना वार्ड में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। इसके साथ ही इस वार्ड में चुनाव प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: मंडी नगर निगम चुनावों के बीच एक चौंकाने वाला और अभूतपूर्व घटनाक्रम सामने आया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 14 बहना में चुनावी गतिविधियां उस समय पूरी तरह रुक गई जब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय सहित सभी प्रत्याशियों ने दोपहर 3 बजे की अंतिम समय सीमा तक अपने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए। इसके साथ ही इस वार्ड में चुनाव प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। यह निर्णय पिछले 2 दिनों से बन रहे जन दबाव का परिणाम है। बहना क्षेत्र के ग्रामीण लगातार बैठकें कर रहे थे और सभी प्रत्याशियों से चुनाव मैदान से हटने की अपील कर रहे थे। अंततः जनता की एकजुटता के आगे सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को पीछे हटना पड़ा। इस सामूहिक निर्णय के पीछे मुख्य कारण बहना के लोगों की पुरानी मांग है, जिसमें वे अपने क्षेत्र को नगर निगम की सीमा से बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम में शामिल किए जाने के बाद उन पर करों का बोझ तो बढ़ा है, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें शहरी सुविधाएं नहीं मिल पाई है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: वहीं लाहौल स्पीति जिले की नवगठित ग्राम पंचायत मालंग में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पंचायत का गठन करते हुए सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव किया। पंचायत के 5 वार्डों में भी बिना चुनाव के ही सभी सदस्य चुने गए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
4: लाहौल स्पीति की नवगठित ग्राम पंचायत मालंग में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से पंचायत का गठन करते हुए सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव किया। पंचायत के 5 वार्डों में भी बिना चुनाव के ही सदस्य चुने गए। उपप्रधान अनिल सहगल ने बताया है कि पंचायत को निर्विरोध चुनने का निर्णय गांव के विकास और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का लाभ पंचायत को मिलेगा, जिससे विकास कार्यों को गति दी जाएगी। ग्रामीणों ने भी इस निर्णय पर खुशी जताई और कहा कि भविष्य में भी पंचायत के प्रतिनिधियों का चयन आपसी सहमति से किया जाएगा, ताकि गांव में एकता बनी रहे और सभी क्षेत्रों का समान विकास हो सके। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनाव को लेकर आज शिमला में एक बैठक आयोजित की। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा और संगठन महामंत्री सिद्धार्थन सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हर चुनावी हार के बाद ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की राजनीतिक आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भाजपा की विजय जनता का स्पष्ट और लोकतांत्रिक जनादेश है। बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार से जनता पूरी तरह निराश हो चुकी है और विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी पंचायती राज व नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला शिमला द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर विकास नगर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सहसर कार्यवाह आलोक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का प्रेरणादायक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पंच परिवर्तन से समाज परिवर्तन का संकल्प है। आलोक ने कहा कि इस संकल्प का मूल उद्देश्य समाज के विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करते हुए एक समरस, जागरूक और उत्तरदायी राष्ट्र का निर्माण करना है। इस अवसर पर प्रांत संघ चालक प्रोफेसर वीर सिंह रांगड़ा, विभाग संघ चालक राजकुमार वर्मा और जिला संघ चालक अजय सूद मौजूद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने और विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का किया आह्वान। प्रदेश के 3,754 ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए कल 7 मई से नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया होगी शुरू। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 3 दिन 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित, अधिसूचना जारी। मंडी नगर निगम के बहना वार्ड में सभी प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिए वापस, फिलहाल चुनाव प्रक्रिया टली। लाहौल स्पीति की मालंग पंचायत में सभी सदस्य निर्विरोध चयनित। और प्रदेश भाजपा का आरोप, ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना कांग्रेस की हताशा व निराशा का प्रमाण। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: तो आप सभी सुन रहे हैं समय एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वीडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर। आयुष होता हूं तो आप वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। जाते जाते यही कहूंगा कि माता पिता की सेवा करते रहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए और पर्यावरण को जो है वो साफ सुथरा ज़रूर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, और जाते जाते ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम

नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्य।

0: चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इससे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं,
2: मानो या ना मानो तुम।

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इससे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
2: है?
3: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 18 की हूँ, कोई बच्ची नहीं, नई हूँ पर कच्ची नहीं।
2: मानो या ना मानो तुम,

0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।
1: हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी, कभी वो कुछ नया ईजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इसे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान गंवाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट, हर धड़कन अनमोल है। इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे, बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
2: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
3: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
2: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
3: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको
2: है?
3: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: मम्मी, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई है, कल अपनी बीवी को कह रहा था तेरे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तू नहीं।
5: अभी 6 महीने रुक जा, तूने एक दूसरे का गला पकड़ के कहेंगे आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

छे।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूं कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो आइए श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

92.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।